印度明天歌曲请收听。

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरा पान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में यह आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

अभी आपने श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति में अयोध्याकांड भाग 50 सुना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ

प्रधानमंत्री इंडिया प्रतामा जवाहरलाल नेहरू पर्णा मंगातकान आंडा बिसा मंगेनाली कोंडिसी सवा नगारा डिंगान मलिहात स्टेटस परम्पुआन परम्पुआनिया सवागे उरांग तर प्लाजार पंडित नेहरू मंगुतारकान पर्यातान इनी उन्तुक आलासान यंग तपात पारा साथ इंडिया मंबुका लिम्बारान बारू बलियाव इंगिन मंगुलांग कम्बाली पर्यातान कयातान बाबा स्टेटस परम्पुआन डिडाला मासाराकात कीता आकान डिलिहात सवागे तोलोक उकुर दरी पम्बांगुनान डान का देवासान सवागे सबुआ बांगसा ओले सलुरु दुनिया तरुतामा सहिंगा कतिका इंडिया जाऊ सबलुम बराडा डिबावा ककवासान पारा पंजाजा या बिसा बरबांगा हाथी पाडा पंडिरियान सजाजार परम्पुआन डी डाला मासाराकात सबुआ श्लोका बरबहासा संस्कृता मनुंजुकान इनी यत्र नम्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यंग बरती तंपा डिमाना पारा परम्पुआन डिसम्बा देवा देवा संडिरी तिंगाल डिसाना सजाकलामा हिंदू इंडिया तला मयंबा पारा देवी आपाका इतु दुर्गा काली लक्ष्मी अथवा सरस्वती देवा डालाम बंतुक परम्पुआन सलालु मंजडी सिम्बॉल ककवातान पयलामात ककायान पम्लाजारान डान पंगहांचुरान का जहातान उन्तुक मंडापातकान सडिकित डरी परजालानान परम्पुआन परम्पुआन इंडिया सलामा बर वाक्तु वाक्तु मारिला कीता मुलाई डरी जामान कुनो इनी आडाला जामान यंग मंबरिकान इंडिया बबरापा चंडकियावान परम्पुआन तरबाइक सपर्ती गायत्री अनुसुया डान मैत्रेयी तीडा आडा परम्पुआन यंग डीलारांग उन्तुक मंगयाम पंडिडिकान अडला डी एरा वेडुक डिमाना परम्पुआन पुन मंजालान कान तुगास तुगास का पंडिता आनिया इनी अडला एरा यंग मंबरिकान परम्पुआन परम्पुआन हाक उन्तुक ममिली मित्रा हिडुपिया मलालुई स्वयंबरा बाइक इपोस रामायणा मापुन महाभारता मनचरिता कान तंतांग स्वयंबरा सीता डान द्रौपदी जुगा तीडा आडा रिचुअल डी जामान इंडिया कुनो यंग डिजालान कान तांपा स्त्री डी सांपिंग स्वामिया चरिता देवा रामा यंग मलाकुकान असुमेधा यज्ञ निगान मंगुकीर सबुआ पातुंग इमास स्त्रिया सीता उन्तुक मंगांतिकान क तीडा हडिरान सीता मरुपाकान चुंतो प्लांगरान अपपुन तरहराप हाक हाक परम्पुआन अडला प्लांगरान सेरियुस डिंगान कॉन्सिक्वेंसी कॉन्सिक्वेंसी बरात लागी बाइक महाभारता डान रामायणा मंचरमिन कान इतु जिका प्रांग डी महाभारता तरजडी उन्तुक मामबालास डंडाम पंगहिनान कौरवा कपाड़ा द्रौपदी रातु डरी पारा पांडवा रामा बरप्रांग मलावान रावणा डान पासुकानिया उन्तुक मंग हुकुमिया कारेना तला मंचुलिक सीता वालापुन मामिली की समुआ इल्मु यंग तला डी प्लाजारी या रावणा हारुस तुंडु कारेना तला मलांगार हाक हाक परम्पुआन वालापुन परम्पुआन तला मनिक मायती तंपात यंग तर होरमात डी एरा वेदिक इंडिया जामान परतंगहान बायाक मंचावुत हाक हाक मरेका डी जामान इनी बायाक पंगवासा आन डरी लुआ डरी का दाटांगा डरी पारा पंजाजा मुस्लिम डिंगान समुआ पड़ातुरानिया बायाक हालांगान डी तुजुकान बागी परम्पुआन पारा सजारावान मलिहात जामान इनी सवागे जामान क ग्लापान बागी परम्पुआन इंडिया कतिका बायाक कजाहतान सोशियल सपर्ती पर निकाहान आनाक प्लांगारान पर निकाहान लागी बागी जांडा जौहर सती कव्यासान देवदासी डी इंडिया स्लातान पुडा डान लाइन लाइन मन डेक्लरासी कान का हरिरानिया डी मासराकत इंडिया परम्पुआन तीडा हया का हिलांगान हक हक पॉलिटिक या तथापि जुगा का व्यवसान बर आगामा इनी मम पंगारूही पंडिडिकान डन स्टेटस सजाजार मरेका डी मासराकत परम्पुआन डी बुआत उन्तुक हिडुप डी अंतारा अम्पात तंबोक रूमा मरेका सुल्तान

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क

0: नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0% व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0% MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
3: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

0: श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले दो दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government says there will be no charges at all for person-to-person UPI transactions, irrespective of amount transferred. Maharashtra government decides to provide soft loans to sugar mills to clear pending dues of farmers for 2025-26 crushing season. Delhi government decides to double monthly incentive for ASHA workers from 3,000 to 6,000 rupees to also build hostels for 10,000 students studying in colleges and universities across the national capital. India-US joint military exercise Youth Abhyas begins at Oli in Uttarakhand and Mahajan Field Firing Range in Rajasthan. New Zealand's parliament passes

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सरकार ने कहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक यूपीआई लेन देन पर कोई चार्जेस आयद नहीं होंगे, खा कितनी ही रकम मुंतकिल की गई हो। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 के पेराई के सीजन के लिए शकर मिलों को नर्म शराइत के कर्जे फराहम करने का फैसला किया है, ताकि किसानों के बकायाजात अदा किए जा सके। दिल्ली सरकार ने आशा कारकुनों के लिए माहाना तरगीबी रकम 3000 रुपए से दोगुना करके 6000 रुपए का फैसला किया है। कौमी राजधानी में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले 10000 तलबा के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। भारत अमेरिका मुश्तरका फौजी मशक युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में होली और राजस्थान में

0: महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो रही है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तिजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने वाजे किया है कि UPI के जरिए एक फर्द से दूसरे फर्द के दरमियान खा कितनी ही रकम का लेन देन किया गया हो, इस P2P लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वजारत खजाना ने बताया कि कारोबारियों के लिए 2,000 रुपये तक की रकम की अदायगी और छोटे कारोबारियों के लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क के तहत लेन देन भी मुफ्त रहेगा। वजारत ने बताया कि नतीजतन सभी P2M लेन देन का तकरीबन 96% हिस्सा इस उसूल से मुतासर नहीं होगा। NPCI ने बताया कि UPI की मर्चेंट डिस्काउंट शरह का नजरसानी शुदा फ्रेमवर्क कुछ खास कारोबारी लेन देन पर आयद किया गया है। ये फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा, जबकि UPI सारिफिन के लिए मुफ्त रहेगी। हमारे नामनिगार ने बताया है कि छोटे कारोबारियों के हाथों UPI के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए MDR की मजमुई हुसूलियाबी के 5% हिस्से से एक खसूसी फंड कायम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: वजारत खजाना ने कहा है कि ये चार्जेस किसी फर्ज से किसी कारोबारी को 2,000 रुपये से ज्यादा की रकम के P2M लेन देन पर आयद होंगे। वजारत ने बताया कि UPI ऐप फ्राहम करने वाली कंपनियों को वाजे तौर पर मना कर दिया गया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की फीस या कोई पोशीदा चार्जेस आयद ना करें। वजारत ने कहा कि बैंकों को मशवरा दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कारोबारी अपनी रियायती शरह MDR के चार्जेस UPI लेन देन के लिए सार्फिन को मुंतकिल नहीं कर रहे हैं। 0.4% की एक बराए नाम शरह P2M लेन देन पर आयद की जाएगी और वो भी 2,000 रुपये की रकम से ज्यादा पर। अलबत्ता 75,000 रुपये और इससे ज्यादा की रकम वाले लेन देन पर ज्यादा चार्जेस लिए जाएंगे। MDR की ज्यादा से ज्यादा रकम फी लेन देन ज्यादा से ज्यादा 300 रुपये होगी। अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: महाराष्ट्र काबीना ने इमदाद बाहमी शकर मिलों के लिए तकरीबन 750 करोड़ रुपए के नर्म शराइत के कर्जों को मंजूरी दी है, ताकि 2025-26 के पैराई सीजन के लिए गन्ना किसानों के वाजिब और मुनाफा बख्श कीमतों के बकाया जात अदा किए जा सकें और 2026-27 के सीजन के लिए मदद की जा सके। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: इमदाद बाहमी शकर मिलों के लिए तकरीबन 750 करोड़ रुपए के नर्म शराइत के कर्जों को मंजूरी देने का फैसला मुंबई में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में काबीना मीटिंग में किया गया। वजीर आला ने कहा कि रियासती सरकार इन कर्जों पर सूद का खर्च उठाएगी। जनाब फडणवीस ने कहा कि इस इकदाम से इमदाद बाहमी शकर मिलों को पेराई के मौजूदा सीजन के लिए गन्ना खरीदने और अपना कामकाज शुरू करने में सहूलत होगी और इससे शकर मिलों और किसानों दोनों को फायदा होगा। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र रियासत ने गन्ना किसानों को वाजिब और मुनाफा बख्श कीमतों की लगभग 99.5% बकाया जात अदा कर दिए हैं और वो इस एतबार से ऐसा करने वाली मुल्क में पहली रियासत है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कारकुनों के लिए महाना मुकर्रा तरगीबी रकम को दोगुना करने का ऐलान किया है। अभी तक ये रकम 3,000 रुपये थी, जिसे 6,000 रुपये कर दिया गया है। ये फैसला कल नई दिल्ली में वजीर आला रेखा गुप्ता की सदारत में मुनक़िदा एक काबीना मीटिंग में किया गया। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: इस महाना तरगीबी रकम में इजाफे से फिलहाल दिल्ली में काम करने वाली 6,000 से ज्यादा आशा कारकुनों को फायदा पहुंचेगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि महाना तरगीबी रकम में ये इजाफा आशा कारकुनों के तआवुन के एतराफ और उनकी माली यकीन दहानी की जानिब एक अहम कदम है। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि इससे उन्हें उनके काम के तहत उनके जज्बे में इजाफा होगा और उन्हें अपनी खिदमात जारी रखने में मदद मिलेगी। इसी दौरान दिल्ली सरकार ने कौमी राजधानी में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 10,000 तलबा के लिए हॉस्टल तामील करने का भी फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला ने कहा कि सरकार कॉलेजों का यह जायजा भी लेगी कि आया हॉस्टल की तामीर के लिए वाफिर जगह मौजूद है। ऋषु जायसवाल की।

0: रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में रियासती काबीना ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का इलाकाई मरकज कायम करने के खातिर अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में 26 हेक्टेयर बंजर जमीन उम्र दाखिला की मरकजी वजारत को मुंतकिल किए जाने की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ का रियासती इंतखाबी कमीशन नवा रायपुर में रियासती इंतखाबी कमिश्नरों की एक दो रोजा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कर रहा है जो आज से शुरू हो रही है। इंतखाबी कमिश्नरों की इस 32वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह गवर्नर रमन डेका करेंगे। मुख्तलिफ रियासतों के इंतखाबी कमिश्नर्स तीसरे दर्जे के पंचायती राज इदारों और शहरी मकामी इदारों को मजीद इख्तियार देने, उन्हें शफाफ, सबकी शमूलियत वाला, काबिल एतबार और शरीक बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। न्यू जर्सी और अमरीका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बैन अलावामी माहरीन भी, जिन्हें जमहूरी इंतखाबात में महारत हासिल है, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान एक दिन के दौरे पर आज बिहार जा रहे हैं। जनाब चौहान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत पर यह दौरा कर रहे हैं। वो सैलाब की सूरत हाल, नीज राहत और बचाव कार्रवाई का जायजा लेंगे और सैलाब से मुतासर किसानों और उनके कुनबों से मिलेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जनाब शिवराज सिंह चौहान पटना जिले में दिघवारा और मानेर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना करने के साथ अपने दौरे का आगाज करेंगे। इसके बाद वो हाजीपुर में तरसिया और सरायपुर गांव जाएंगे। पटना में जनाब चौहान रियासत के वजीर आला सम्राट चौधरी और सरकर्दा अफसरों के साथ आला सतह की मीटिंग करेंगे। इसमें सैलाब की सूरत हाल, बचाव और राहत कार्रवाइयों, नीज मुतासरा किसानों को फराहम की गई इमदाद का जायजा लिया जाएगा। इधर बिहार में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन है। 15 जिलों में तकरीबन 50 लाख अफराद पर सैलाब का असर पड़ा है। मरकजी आबी कमीशन के मुताबिक कई मकामात पर दरियाए गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन, बागमती और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पटना से अभिषेक दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: भारत अमेरिका मुश्तरका फौजी मशक युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में औली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है। भारत और अमेरिका के दरमियान 22वीं मुश्तरका फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब उत्तराखंड के चमोली जिले में औली के मकाम पर हुई। इसमें दोनों मुल्कों में से हर एक मुल्क के 600 एहलकारों के दस्तों ने हिस्सा लिया। इस फौजी मशक का मकसद पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका फौजी कार्रवाई के लिए दोनों मुल्कों की अफवाज की सलाहियत में इजाफा करना है। इसमें इन्फेंट्री पर मबनी कार्रवाई पर खास जोर दिया जा रहा है। इस तरबियत में निगरानी के लिए ड्रोन और खुद मुख्तार निजाम का इस्तेमाल शामिल है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर जदीद तर्ज के असलहा निजाम का मुजाहरा भी किया जाएगा। दोनों अफवाज के माहरीन उभरती हुई टेक्नोलॉजियों और कसीर रुखी जंगी साजो सामान से मुतालिक हालात और वाकयात पर अपना अपना नुक्ते नजर पेश करेंगे। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ अपने आजाद तजारती समझौते पर अमल दरामद के लिए एक बिल को मंजूरी दी है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान महसूलात में खातिरखा कमी आ जाएगी और तिजारत में वसत पैदा होगी। इस बिल को मंजूरी 29 के मुकाबले 93 वोटों से दी गई, जिसमें अपोजिशन लेबर पार्टी ने भी हिमायत का इजहार किया। न्यूजीलैंड के तिजारत के वजीर टॉड मैकक्ले ने कहा कि इस समझौते से बरामदकारों को फौरी और खातिरखा फायदे हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये आला क्वालिटी वाला तिजारती समझौता इस साल के आखिर तक लागू हो जाएगा। समझौते के तहत न्यूजीलैंड की तरफ से भारत को की जाने वाली तकरीबन 95% बरामदात पर से महसूलात हट जाएंगे या इनमें खातिरखा कमी कर दी जाएगी। इस समझौते में शामिल की गई आधी से ज्यादा मसनूआत महसूलात से आजाद हो जाएंगी। सभी भारतीय अशिया पर न्यूजीलैंड की मार्केट में रसाई पर महसूलात आयद नहीं होंगे। न्यूजीलैंड में भारत ने अगले 15 साल के दौरान 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से भी इत्तेफाक किया है। मर्दों की क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 160 रन का जीत का निशाना 14 ओवर्स और 5 गेंदों में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर धुआंधार 57 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए। ईशान किशन ने 23 गेंदों पर 38 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान से बल्लेबाजी करने को कहा और उसने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। कप्तान इब्राहिम जदरान ने सबसे ज्यादा 37 रन स्कोर किए। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रेड्डी को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच कल दिल्ली में इसी मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश की पेशगोई की है। केरला माहे पंजाब मगरबी बंगाल में जैली हिमालयी खत्ते सिक्किम तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 2 दिन के दौरान बिहार जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड उड़ीसा और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज दुनिया भर में ओजोन का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जमीन पर जिंदगी की हिफाजत में ओजोन परत के रोल की अहमियत के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मनाया जाता है। इस साल का मौजू है एक ज्यादा ठंडे कुर्रे अर्ज के लिए आलमी इकदाम। इस मौजू के तहत ओजोन परत के तहफ्फुज में बैन अलाक्वामी ताउन की हुसूलियाबियों को उजागर किया गया है। जल शक्ति की वजारत ने जल संचय जन भागीदारी बारिश के पानी का तहफ्फुज करो तहरीक के लिए एक तराना जारी किया है। इसे मारूफ गुलूकार और मूसीकार शंकर महादेवन ने गाया है। इस गाने से लोगों की शिरकत के जरिए पानी के तहफ्फुज और बारिश के पानी को वापस जमीन में पहुंचाने के लिए एक मुल्कगीर तहरीक को मौसीकी पर मबनी एक आवाज मिली है। वजारत ने बताया कि इस तराने का मकसद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पैगाम को हर गांव कस्बे स्कूल इदारे और घर तक पहुंचाना है और नौजवानों में जज्बा पैदा करना है कि वो पानी के तहफ्फुज के सफीर बने। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, इंजीनियर्स डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को मुबारकबाद दी, विश्वेश्वरैया के मुल्क की तामीर के विजन को याद किया। अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए दिफाई शोबे में मुतअद्दिद नई पहलकदमियों के आगाज किए जाने के मौके पर उनके इस बयान को नुमाया किया है कि दिफाई शोबे में अहम SME और स्टार्टअप्स के लिए आसान होगी राह। अखबार इंकलाब ने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर से खिताब को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि अदलिया खुद को एहतसाब से बालातर रख कर एतमाद हासिल नहीं कर सकती। किशाओ प्रोजेक्ट से दिल्ली को मिलेगा 109.9 MCM इजाफी पानी।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सरकार ने कहा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक UPI लेन देन पर कोई चार्जेस आयद नहीं होंगे, खा कितनी ही रकम मुंतकिल की गई हो। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 के पैराई के सीजन के लिए शकर मिलों को नर्म शराइत के कर्जे फराहम करने का फैसला किया है, ताकि किसानों के बकायाजात अदा किए जा सकें। दिल्ली सरकार ने आशा कारकुनों के लिए माहाना तरगीबी रकम 3,000 रुपए से 2 गुना करके 6,000 रुपए करने का फैसला किया है। कौमी राजधानी में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले 10,000 तलबा के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। भारत अमेरिका मुश्तरका फौजी मश्क युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में औली और राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो रही है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने भारत के साथ आजादाना तिजारत के समझौते को नाफिज करने के लिए मुतालिका बिल को मंजूरी दे दी है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह भारत ने 2-0 की सबकत हासिल करके 3 मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। खबरनामा खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ 8:45:15। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आप सुनेंगे श्वेता दुबे से गायन, राग है ठुमरी दादरा और कजरी धुन, तबले पर संगत दी है फजल ढोलपुरी ने और हारमोनियम पे हैं करीम नियाजी। तो आइए सुनते हैं श्वेता दुबे को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपये से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपये या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपये प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार

0: मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said that consequently approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariff and expanded trade between two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. The 22nd edition of India-US Joint Military Exercise Yudh Abhyas kicked off at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand yesterday with contingents of 600 personnel each from the two countries participating. The exercise is simultaneously being conducted at Mahajan Field Firing Range in Rajasthan also. Here's a report.
3: The exercise aims to enhance capabilities of both armies to conduct joint military operations in mountainous and semi-mountainous area with special emphasis on infantry-based operations. During the exercise, the two armies will exchange operational methods and strengthen joint planning and operations. The training will include the use of drones and autonomous system for surveillance and reconnaissance. Modern weapon system will also be demonstrated at the Mahajan Field Firing Range. Experts from both armies will exchange views on emerging technologies and developments related to multi-domain warfare.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day official visit to Bhutan from today. He will hold bilateral talks with Foreign Minister of Bhutan, Leonpo Dien Dungyel. The External Affairs Minister will receive a royal audience with the King of Bhutan and call on the Prime Minister of Bhutan. The Ministry of External Affairs said the visit continues the tradition of regular high-level exchanges and to further strengthen the close ties of friendship and cooperation between India and Bhutan. Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth is on an official visit to Russia from today till the 18th of September.

Her an dedi. FM Gold 100.1 MHz पर मैं आ पहुंची हूं आपकी प्यारी सी दोस्त अमित कमल। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम। दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.1 यानी 819 किलो हर्ट्स पर भी, और साथ ही इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर भी। दोस्तों, मुलाकात भी जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हो, वरना लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। इसलिए हम आ गए हैं आपसे मुलाकात करने और ढेर सारी बातें करने, और हमें है अपने रेडियो से प्यार।

ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम रोज़ाना बात करते हैं डेज ऑफ द डे की, और आज है ओजोन परत दिवस, ओजोन लेयर डे। आधिकारिक रूप से दोस्तों इसे इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर सन 1994 को 16 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 16 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस डैट डिप्लेट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर हुए थे। इस दिवस का उद्देश्य केवल ओजोन परत के बारे में जानकारी देना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चेतावनियों को वैश्विक नीतियों, तकनीकी बदलाव और जन भागीदारी में भी बदलाव करना है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक हों। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवीबी विकिरण के बड़े हिस्से को अवशोषित करती है, और यदि यह सुरक्षा कमजोर हो जाए तो त्वचा कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद तथा प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इस साल इसका थीम दोस्तों है ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट। और साथ ही आपको बता दें कि जो आम जनता है वो भी ओजोन परत को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकती है। वो कैसे दोस्तों? आप कार्बन से युक्त चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें। गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए नियमित तौर पर गाड़ियों की देखभाल आपको करते रहना चाहिए। रबड़ और प्लास्टिक की चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए ताकि वातावरण में ये धुआं ना फैले और जो पृथ्वी के ओजोन लेयर है, वो परत है, वो ठीक रहे। वाहनों का कम से कम, अगर आप पैदल जा सकते हैं कहीं पर तो पैदल जाने की कोशिश कीजिए। कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, इससे ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आप कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो उससे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही वृक्षों की कटाई ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप एक योगदान दे सकते हैं। तो आज का सवाल हमारा यही है कि आप किस तरीके से पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए अपना योगदान देते हैं ओजोन परत को सुरक्षित रखने में। आप क्या योगदान देते हैं हमें मेल कर कीजिए। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतज़ार। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आप ओजोन लेयर को बचाने के लिए अपना क्या योगदान देते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

दोस्तों, ये गीत आपने सुना गोलमाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। और दोस्तों, सवाल एक बार फिर से आपके सामने दोहरा देते हैं। आज का सवाल है, आप ओजोन लेयर को बचाने में अपना क्या योगदान देते हैं? इसके लिए आप नोट कर सकते हैं हमारा मेल आईडी fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतज़ार। सुनते रहिए घर आंगन कार्यक्रम। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीज ऑफ द डे की। और स्वास्थ्य की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आज एक और डे है, इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डे। और ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और दुनिया भर में हृदय स्वास्थ्य को पहचानने के लिए समर्पित है। ये दिन जागरूकता बढ़ाने और बचाने के लिए, जीवन को बचाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरवेंशनल कार्डियो एंजियोलॉजी स्वास्थ्य में सुधार करती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। पहली कैरोनरी एंजियोप्लास्टी 16 सितंबर सन 1977 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुटजिग द्वारा की गई थी और सितंबर 2022 में महासभा ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और संबंधित जटिलताओं के साथ ही रोकथाम और देखभाल के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मनाया जाता है। ये दिवस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हृदय रोगों और उनके निदान और उपचार में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, ये व्यक्तियों को प्रारंभिक पहचान और समय पर जानकारी हो जाने के बाद उन्हें बताता है किस तरीके से वो अपने दिल का ध्यान रख सकते हैं। तो आप भी अपने दिल का ध्यान रखिए।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। दोस्तों, हमने सवाल पूछा था कि ओजोन परत को बचाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या योगदान देते हैं, और हमारे पास हमारे रेगुलर लिसनर हैं नवीन भाटिया जी। उनका मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि घर के पास वो पार्क में उसमें एक प्लांट अवश्य लगाते हैं, एक पौधा ज़रूर लगाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है नवीन भाटिया जी, ये प्रोत्साहित करने के लिए कि आप के अंदर वो जज्बा बाकी है कि आप भी कुछ योगदान करें पृथ्वी के लिए। तो दोस्तों, आप क्या योगदान कर रहे हैं ओजोन परत को बचाने के लिए, हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, डेज ऑफ द डे की बात कर रहे हैं हम, और आज एक और डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ। इसमें दोस्तों, ये जो डे है, अगर इसे हिंदी में समझें तो ये दक्षिणी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस कहा जाता है, और ये दिवस हर साल 16 सितंबर यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 जनवरी सन 2024 को एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। पहली बार ये दिवस 16 सितंबर 2024 को मनाया गया था, और ये दिवस अमीर और विकासशील देशों के बीच तकनीकी अंतर को कम करने पर जोर देता है। साथ ही साथ ये जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को भी बताता है, और इस दिवस पर आप ऐसा कर सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति। जिस बच्चे में साइंस के प्रति रुझान हो तो आप उसे प्रोत्साहित करें उनकी प्रति, और जिसमें ना भी हो तो उनके प्रति रुचि जगाने का प्रयास करें। उन्हें आप किताबें दे सकते हैं, किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और जैसे बच्चे कुछ सवाल पूछें कि आकाश नीला क्यों होता है, तो उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे बताएं, कैसे भी करके उसे बताएं, और साथ ही आसान तरीके से आप उन्हें साइंस से जुड़ने का प्रयास करवा सकते हैं। तो ये तो बात हुई डेज ऑफ द डे की, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

दोस्ताना फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। दोस्तों, हमने सवाल पूछा था ओजोन परत को बचाने के लिए आप अपना क्या योगदान देते हैं। हमारे पास अनिल बेनीवाल जी का मैसेज आया है हिसार से। ये लिखते हैं, राम राम जी, पॉलीथीन का उपयोग कम करना पड़ेगा, ये लिख रहे हैं। और साथ ही हमारे पास आया है चरण दास राजू अग्रवाल लंगाड़ी से, ये मैसेज लिखते हैं। ये लिखते हैं, ओजोन दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, बहुत गंभीर विषय है, बड़ी तकलीफ़ होती है। थोड़ी सी खुशी होते ही हर इंसान खतरनाक पटाखे जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण करते हैं उसे चलाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात लिखी कि पटाखों का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहिए। नवाब अहमद भारती हैं बल्ली मारान से, ये लिखते हैं, आरजे अमित कमल जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है, ओजोन से बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और आपके द्वारा दी गई जानकारी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो गीत बजा रहे हैं वो भी उन्हें पसंद आ रहे हैं। धन्यवाद नवाब अहमद भारती जी। और सवाल एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सवाल है, आज है ओजोन दिवस, ओजोन लेयर दिवस, और आप किस तरीके से योगदान देते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए। तो ये गीत आपके लिए।

छोटी सी बात फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। घर आंगन कार्यक्रम चल रहा है 100.1 मेगा हर्ट्स पर FM गोल्ड पर, और हमने सवाल पूछा था ओजोन लेयर को बचाने के लिए आप अपना क्या योगदान देते हैं, और हमारे पास डॉक्टर राजेश्वर राव जो शकरपुर दिल्ली से लिख रहे हैं, रिड्यूस कार यूसेजेस बाय वॉकिंग, बाइकिंग, कार पुलिंग और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा ये लिख रहे हैं। और दोस्तों डीज ऑफ द डी की बात कर रहे हैं, और कर्नाटक संगीत का वो दौर जब दूर दूर तक किसी महिला गायिका का नाम तक नहीं आता था, तब एक महिला एक ऐसा सितारा चमकी जिनका नाम था MS सुब्बलक्ष्मी, जिनका गायन के क्षेत्र में एक विशेष स्थान है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि आधुनिक भारत की वो मीरा हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि हरि तुम हरो जन की भीर, इस मीरा भजन को श्रीमती सुब्बलक्ष्मी बोल भी दें तो वो भजन किसी और के गाने से ज़्यादा सुरीला हो जाएगा। वो ऐसी पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। आज डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी की जयंती है। सुब्बलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर सन 1916 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने संगीत की शिक्षा पूरी कर ली थी। 10 साल की उम्र तक पहुंचते हुए उनका पहला डिस्क रिकॉर्ड भी कर लिया था, और 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला संगीत भी पेश किया था। सुब्बलक्ष्मी ने कई भाषाओं में गीत रिकॉर्ड किए, इनमें मलयालम, पंजाबी भी शामिल है। इन्होंने पंडित नारायण व्यास के अलावा आर्य कुडी, श्रीनिवास अय्यर तथा और रामानुज अयंगर से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा था। सुब्बलक्ष्मी महान गायिका हैं और उनकी हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं।

आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म बातों बातों में से। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप FM गोल्ड 100.1 MHz पर। और दोस्तों हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, जो हमने आपसे सवाल पूछा। हमारे पास अरहान अहमद का वज़ीराबाद से मैसेज आया है। ये लिख रहे हैं, अमित कमल जी, आपके द्वारा पेश किया जा रहा प्रोग्राम घर आंगन हमें बहुत कुछ सिखाता है। आपकी जानकारी हमें बहुत कुछ बताती है, जो हमें नहीं मालूम होता वो भी हमें जानने का मौका मिलता है। धन्यवाद। और ये सब आपका प्यार है श्रोताओं, और हमारी जो पूरी टीम है इसी प्रयास में रहती है कि आप तक नई नई जानकारियाँ पहुँचाई जाएँ। और ये जानकारी सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारी पूरी टीम इसमें मेहनत करती है, तो ये श्रेय उनको भी जाता है। और दोस्तों, हम डेज ऑफ द डेज की बात कर चुके हैं, और अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। हर महिला के वार्डरोब में ऐसी कुछ साड़ियाँ ज़रूर होती हैं जिन्हें पहनने का कभी नंबर नहीं आता। सालों रखे रखे ये साड़ियाँ अलमारी के किसी कोने पड़ी रह जाती हैं, अब इन्हें फेंकने का मन तो नहीं करता दोस्तों। और ओल्ड फैशन होने की वजह से कोई पहनना भी पसंद नहीं करता। ऐसे में सवाल आता है कि क्या इनका क्या किया जाए। तो क्यों ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर आप एक काम की चीज़ तैयार कर सकती हैं। जी हाँ, अपनी पुरानी साड़ी से आप सुंदर सी बेडशीट बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए दो अलग अलग रंगों की साड़ियों को जोड़कर एक बेडशीट बनाई जा सकती है, या फिर कई साड़ियों को काटकर और आपस में जोड़कर पैच वर्क वाली कलरफुल बेडशीट भी बनाई जा सकती है। और साथ ही साथ पुरानी साड़ियों से आप कुशन कवर भी बना सकते हैं, और इसे आपको कैसे तैयार करना है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। खासकर सिल्क की साड़ियों से आप कुशन कवर काफ़ी सुंदर लगते हैं, इन्हें आप फेस्टिवल पर यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा और क्रिएटिव करने के लिए आप इसमें लेस लगवा सकती हैं और सुंदर लुक इससे आएगा। इसके साथ ही आप पुरानी साड़ियों से अपना सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम भी बना सकती हैं। खासकर बनारसी साड़ियों और हैवी साड़ियों से डेकोरेटिव फ्रेम बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। बस उस हिस्से को अलग से काट लें और किसी फ्रेम में लगाकर रूम में डेकोरेट कर लें। ये क्रिएटिव हैक फेस्टिवल सीजन में काफ़ी काम आता है। और हल्के फैब्रिक वाली साड़ियों को दोस्तों आप पर्दे बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रंग बिरंगे पर्दे घर में

0: अलग ही वाइब ऐड करते हैं। खासतौर से लाइट कलर्स और फ्लोरल प्रिंट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। थोड़ी और क्रिएटिविटी दिखाकर आप इसमें लेस भी लगा सकती हैं, गोटा लगा सकती हैं, और पुरानी साड़ियों से आप खूबसूरत सा टेबल रनर भी बना सकती हैं। इसके लिए आप साड़ी का वो वाला हिस्सा चुनें जिस पर सुंदर प्रिंट वाली या बॉर्डर वाली साड़ियां हों। तो आप इस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकती हैं, और पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल भी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप है ना पुरानी साड़ियों को रखे रहेंगे तो वो थोड़ा सा अगर पहनेंगे भी तो वो उतना लुक नहीं देती हैं। तो आपको क्या करना है, जो हमने आपको तरीका बताया है उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। हमारे पास एक और मैसेज आया है योगराज जी का, ये लिखते हैं, नमस्ते, मैं दिल्ली बुराड़ी से लिख रहा हूँ, अमृत विहार से, और ओजोन परत को बचाने के लिए आपने जो सवाल पूछा, मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखते हैं पेड़। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

रूना लैला और भूपेंद्र की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं घर आंगन कार्यक्रम में। और स्टूडियो की जो घड़ी है हमें इशारा कर रही है आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा मेल आईडी है वही fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का इंतज़ार। इसी के साथ अपनी दोस्त अमित कमल को यहीं पर दीजिए इजाज़त अगली मुलाकात तक। नमस्कार।

0: और आंगन।
1: आपके अस्तित्व
0: घर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।
0: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन का यह सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देशभर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष

0: समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Lalema Aneja Dang. Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person, that is P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all person-to-merchant transactions will remain unaffected. It said that Merchant Discount Rate MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. New Zealand's Parliament has passed legislation to implement its free trade agreement with India, paving the way for significant reductions in tariffs and expanded trade between the two countries. The legislation was approved by a vote of 93-29 with support from the opposition Labour Party. New Zealand Trade Minister Todd McClay said the agreement would deliver immediate and substantial benefits for exporters. He said the high-quality trade deal is expected to enter into force later this year. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from tomorrow across the country. It will continue till the 17th of next month. The key focus areas of the campaign include transforming cleanliness target units and high footfall public places, promoting youth participation in cleanliness and promoting Swachhata Se Samriddhi through circular economy and waste to wealth initiatives. The theme of this year's campaign, Swachhata Me Sehbhag, Swachh Bharat, Vikasit Bharat, underlines the role of collective participation and shared responsibility in advancing the vision of a Swachh and Vikasit Bharat. Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth is on an official visit to Russia from today till the 18th of this month. During his three-day visit, General Seth will hold discussions with the Commander-in-Chief of the Russian Land Forces, Colonel General Andrei Mordvikhev, on issues of mutual interest, including professional military cooperation and training. He will receive a ceremonial guard of honour and pay tribute to fallen soldiers at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow. Well, World Ozone Day is being observed across the globe today. The day is dedicated to raising awareness about the crucial role of the ozone layer in safeguarding life on Earth. The theme for 2026 is Global Action for a Cooler Planet. This year marks the 10th anniversary of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol. On the occasion, Minister of State for Environment, Forest and Climate Change Kirtivardhan Singh said that the ozone layer is the shield against harmful UV rays. In a social media post, the minister said that simple measures like maintaining ACs at 24 degrees Celsius and choosing efficient appliances reduce emissions for a healthier earth. Well, two earthquakes struck Nepal's northwestern Mugu district within 3 hours early this morning. There were no immediate reports of casualties.

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:10 हुए हैं और इस समय हम रोज आपको एक ही फिल्म से रूबरू करवाते हैं। कभी कभी जिंदगी में कोई मुलाकात बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है कि वो एक मुलाकात पूरी जिंदगी की कहानी बन जाता है। एक मुलाकात, एक नज़र और फिर शुरू होता है रिश्तों, यादों और इंतज़ार का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आज की हमारी मुलाकात है 1967 की एक ऐसी फिल्म से जिसके नाम में ही एक खूबसूरत एहसास छिपा है, छोटी सी मुलाकात। आइए शुरुआत करते हैं।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्या खूब कहा है, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई और प्यार बन के गले का हार बन गई। ये गीत फिल्म के शीर्षक को जैसे पूरी तरह जीवंत कर देता है। मोहब्बत की शुरुआत अक्सर किसी बड़ी घटना से नहीं होती, कभी एक छोटी सी मुलाकात ही दिल में ऐसी जगह बना लेती है जिसे फिर उम्र भर भुलाया नहीं जा सकता।

फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे बंगाल के महान अभिनेता उत्तम कुमार और हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री वैजंती माला। फिल्म का निर्देशन किया था आलू सरकार ने और संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। आपको बता दें कि फिल्म मुख्य रूप से बंगाली कहानी पर आधारित थी, साथ ही 1954 की बंगाली फिल्म अग्निपरीक्षा का हिंदी रूपांतरण थी, जिसकी कहानी प्रसिद्ध लेखिका आशा पूर्णा देवी के उपन्यास पर आधारित थी। और दिलचस्प बात यह है कि बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार उत्तम कुमार ने इस फिल्म में अभिनय के साथ साथ निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाली थी।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है छोटी सी मुलाकात।

0: और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस फिल्म की कहानी रिश्तों की उन उलझनों को सामने लाती है जहां बचपन में लिया गया एक फैसला बड़े होकर जिंदगी के सामने एक बड़ा सवाल बन जाता है। फिल्म की कहानी में बचपन में हुआ एक विवाह आगे चलकर रिश्तों के बीच उलझन पैदा करता है। दोनों बच्चे उस उम्र में रिश्ते की गंभीरता को समझ नहीं पाते। समय गुजरता है, बच्चे बड़े होते हैं और फिर परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा करती हैं। यही से कहानी में प्रेम, पहचान, परिवार और सामाजिक बंधनों की परतें खुलने लगती हैं। यानी कहानी का मूल सवाल सिर्फ ये नहीं कि दो लोग मिलेंगे या नहीं, बल्कि ये है कि क्या बचपन में बंधा रिश्ता बड़े होने पर दिल का रिश्ता बन सकता है।

1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का सुनहरा दौर था और शंकर जयकिशन की खासियत यही थी कि वे प्रेम गीतों में भी अलग रंग भर देते थे। कहीं शरारत, कहीं रोमांस और कहीं विरह और कहीं मन की बेचैनी। और अब बात उस जोड़ी की जिसने फिल्म को खास बनाया। एक तरफ थी वैजयंती माला, शास्त्रीय नृत्य में पारंगत, खूबसूरती और अभिनय दोनों में अपनी अलग अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री। दूसरी तरफ थे उत्तम कुमार, बंगाली सिनेमा के महानतम सितारों में से गिने जाने वाले कलाकार। दोनों की स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म के रोमांटिक पक्ष को एक अलग आकर्षण देती है। फिल्म में राजेंद्र नाथ, शशिकला, तरुण बोस जैसे कलाकार भी नजर आए।

फिल्म में, गीतों में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर जैसे दिग्गज गायकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिल्म के गीतों में बचपन की मासूमियत भी है और जीवन की उलझन भी, यानी एक ही फिल्म के संगीत में भावनाओं की पूरी दुनिया समाई हुई है।

इस फिल्म में गीतकार शैलेंद्र ने गीतों में ऐसी बेचैनी रखी कि गीत सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई प्रिया की राह देख रहा हो। शाम ढलती है, आंगन सूना लगता है और आंखें बार बार उसी राह को देखती हैं। यही तो प्रेम है। और अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में वो गीत जिसमें प्रेम का आग्रह हमेशा कुछ अलग ही लगता है। आवाज़ में मिठास भी, मनुहार भी और सामने वाले को रोक लेने की एक मासूम कोशिश भी। 1967 की ये फिल्म शायद अपने समय में उतनी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इसका संगीत आज भी लोगों के दिलों में है। शायद यही सिनेमा की खूबसूरती है कि कभी कोई अचानक मिल जाए, कुछ पल बातें हों और फिर रास्ते अलग हो जाएं, लेकिन वो छोटी सी मुलाकात याद बनकर हमेशा साथ रहती है।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों इस बुलेटिन में अमन देव पहला 4 मिनट खबर। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति दरमियान यूपीआई लेन देन

सरकार जो काफी आर्थिक निगम एनपीसीए के लिए आया गया कोई चार्ज

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हुए टैक्स पॉलिसी पर जामे बहस मुबासे पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तानी बहरिया के यूनिटों के नाकाबिल कबूल तर्ज अमल पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बैन अलाक्वामी आबी हदूद में बहरिया के साथ टकराव का वाकया पेश आया था। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज से भूटान के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ रूस के तीन दिन के दौरे पर गए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने मक्का मुअज्जमा के नजदीक हौसियों के एक ड्रोन को मार गिराया। उसने मजीद हमलों के खिलाफ तंबीह भी की है, जबकि हौसियों ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया है। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और शिमाल मशरक के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत को टैक्स से मुतालिक पेश की जाने वाली तजावीज में टैक्स की शरह में कमी, छूट या रियायत हासिल करने से बढ़कर मुल्क के मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वो आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन के जेर एहतमाम नए दौर की टैक्सकारी के मौजू पर मुनक्किदा दो रोजा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रही थीं। वजीर खजाना ने माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन और थिंक टैंक से अपील की कि वो टैक्स पॉलिसी के बारे में आजादाना तहकीक को अवामी बहस का बाकायदा हिस्सा बनाएं, ताकि तहकीक का जायजा लिया जा सके, इस पर सवालात उठाए जा सकें और इसे मजीद बेहतर बनाया जा सके। अपनी वजारत की जानिब से बजट से पहले की जाने वाली मुशावरत का जिक्र करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुशावरती सरगर्मियों में ये बड़े सवालात भी उठाए जाने चाहिए कि विकसित भारत 2047 की जानिब बढ़ते हुए आइंदा दो दहाइयों के लिए भारत का टैक्स निजाम कैसा होना चाहिए। उन्होंने टैक्स से मुतालिक बेहतर तहकीक की जरूरत पर जोर दिया, जो तमाम पहलुओं का जायजा ले, इसके असरात की पैमाइश करे, मुख्तलिफ मफादात के दरमियान समझौते को तस्लीम करे और हर मुमकिना सरकारी आमदनी के नुकसान के बदले काबिल अमल मुतबादिल तजावीज पेश करे। उन्होंने कहा कि इस तरह की तहकीक हुकूमत को मुख्तलिफ मुतबादिलों में से मुनासिब इंतखाब करने में मदद देगी, जिसके नतीजे में एक बेहतर टैक्स पॉलिसी तश्कील दी जा सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस इश्तराक व तआवुन को फरोग देने, जिद्दत तराजी को रफ्तार फराहम करने, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाने, सरमायाकारी को रागिब करने और मुस्तकबिल के लिए तैयार महारत को फरोग देने की खातिर आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को यकजा करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित होगी। इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैन अलाक्वामी कंपनियां और 40 से ज्यादा ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनकाद मुश्तरक तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और SEMI कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबासे और कलीदी अहमियत के हामिल इजलास मुनक्किद होंगे, जिसमें सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी समेत सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निज़ाम के अहम शोबों और उभरते रुझानात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये प्रोग्राम भारतीय और बैन अलाक्वामी कंपनियों को शराकतदारी, सरमायाकारी के मौके और टेक्नोलॉजी के इश्तराक के इम्कान तलाश करने के लिए अहम

0: Houthi drone near Makkah. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
2: The question should not only be,
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
1: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परम्परा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक

0: भी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान

0: व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
3: वासुदेव कमला,
4: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बू लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवा ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, कभी कभी किसी फिल्म की कहानी हमें कुछ घंटों तक बांधे रखती है, लेकिन उस कहानी के गीत सालों साल हमारे साथ चलते हैं। कभी किसी गीत में प्यार की मासूमियत सुनाई देती है, तो कभी परिवार की खुशियाँ, कभी दोस्ती और कभी त्योहारों का ऐसा रंग जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो आज ऐसे ही एक संगीतकार जोड़ी की बात करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में जब यादगार धुनों की बात करते हैं ना, तो राम लक्ष्मण का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, इन फिल्मों के गीतों ने सिर्फ लोकप्रियता हासिल नहीं की, बल्कि एक दौर की पारिवारिक और रोमांटिक फिल्म संगीत की पहचान भी बना दी थी। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक मशहूर संगीतकार की नहीं, आज की कहानी एक ऐसे संगीतकार की है जिसने अपने साथी की मृत्यु के बाद भी उसकी पहचान को अपने नाम से अलग नहीं होने दिया। ये कहानी है काशीनाथ पाटिल, यानी हमारे जाने पहचाने राम लक्ष्मण की।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत संगीत फिल्म 100 डेज से लिया गया है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम कलाकार यानी कि एक ही कलाकार जो आज हमने चुना है राम लक्ष्मण। विजय पाटिल का जन्म 16 सितंबर 1942 को नागपुर में हुआ था। संगीत उनके जीवन में बहुत जल्दी आ गया था। उन्होंने शुरुआती संगीत शिक्षा अपने परिवार से ही हासिल की और आगे चलकर शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया। नागपुर में वे गायक और वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकार के रूप में ऑर्केस्ट्रा से जुड़ गए, लेकिन उनके सपने सिर्फ मंच पर गाने या वाद्य बजाने तक तो सीमित नहीं थे। वो संगीतकार बनना चाहते थे और इसी सपने को लेकर विजय पाटिल मुंबई पहुंच गए। हालांकि मुंबई में आना संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाना था, यहां पर उनका संघर्ष भी बढ़ा और मुलाकात हुई सुरेंद्र कदम से। सुरेंद्र भी संगीतकार बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे थे। दोनों की दोस्ती हो गई, संगीत को लेकर सोच भी मिली और धीरे धीरे दोनों ने साथ काम करने का फैसला ले लिया। यहीं से जन्म हुआ उस जोड़ी का जिसे आगे चलकर हिंदी सिनेमा में राम लक्ष्मण के रूप में जाना। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये नाम उन्होंने खुद नहीं चुना था। मराठी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता निर्माता दादा कोंडके ने इस जोड़ी को राम लक्ष्मण नाम दिया था। दादा कोंडके ने अपनी फिल्म पांडु हवलदार में इसको संगीत देने का मौका दिया था और यहीं से उनकी प्रतिभा की पहचान हुई थी। साल 1975 ये मौका दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। फिल्म का संगीत लोकप्रिय हुआ और राम लक्ष्मण की जोड़ी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी। यानी जिस जोड़ी ने आगे चलकर हिंदी सिनेमा में रोमांस, परिवार और उत्सव के गीतों की नई लोकप्रियता दी। उनकी शुरुआत हुई थी मराठी सिनेमा से। इसके बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कौन सा वो मोड़ था, बात करेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, राम लक्ष्मण का संगीत के जो करियर की शुरुआत है वो बहुत ज़बरदस्त हुई, और जैसे ही उनका कदम हिंदी फिल्मों में रखा गया, राम लक्ष्मण को हिंदी फिल्म एजेंट विनोद मिली। लेकिन फिल्म के साथ जुड़ने के कुछ ही समय बाद सुरेंद्र कदम यानी कि राम का निधन हो गया। विजय पाटिल के सामने अब एक बड़ा सवाल था कि क्या वो राम लक्ष्मण नाम छोड़ दें या अपने साथी की याद को अपने काम के साथ जीवित रखें। विजय पाटिल ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अकेले ही संगीत देना जारी रखा, लेकिन नाम वही रखा, राम लक्ष्मण। यानी एक व्यक्ति संगीत दे रहा था लेकिन नाम में दो लोगों की साझेदारी कायम थी। ये फैसला सिर्फ कमर्शियल पहचान बनाने का नहीं था, बल्कि वो अपनी यादों में संगीत में अपने साथी को सम्मान देना चाहते थे, उन्हें हमेशा संगीत में याद रखना चाहते थे। और इसी कहानी को शायद सभी लोगों ने बहुत ही भावुकता से देखा। समय आगे बढ़ता गया, राम लक्ष्मण नाम से विजय पाटिल ने हिंदी, मराठी, भोजपुरी सिनेमा में लगातार संगीत दिया। एजेंट विनोद, तराना, 100 डेज, पुलिस पब्लिक, पत्थर के फूल, और उसके बाद दौर आया 1989 का। फिल्म थी मैंने प्यार किया, निर्देशक सूरज परचात्या, मुख्य भूमिका में थे सलमान खान और भाग्यश्री, और संगीत दिया राम लक्ष्मण ने। फिल्म की कहानी में प्यार था, दोस्ती थी, परिवार था, और इन भावनाओं को गीतों ने आवाज दी। इस संगीत को भी लोगों के यादों का हिस्सा बन गया।

सलमान खान और भाग्यश्री, और संगीत दिया राम लक्ष्मण ने। फिल्म की कहानी में प्यार था, दोस्ती थी, परिवार था और इन भावनाओं को गीतों ने आवाज दी। इस संगीत को भी लोगों के यादों का हिस्सा बन गया। मैंने प्यार किया कि सफलता ने राम लक्ष्मण को देश भर में एक बड़े फिल्म संगीतकार के रूप में स्थापित कर दिया और इसी फिल्म के संगीत के लिए विजय पाटिल को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।

भाई हमारे बहुत सारे श्रोता भी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और अपने अपने संदेश, प्यारे प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो ये पहला संदेश आया है चानीसर गौत से, अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णा लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक, शेख शंकर, गुल शर्मा, बिरानी वाले, और सारे गाने उन्हें बहुत ही अच्छे लिख रहे हैं, ऐसा संदेश उनका है। और अगले संदेश के साथ हैं तुलसी मस्कीन जी, जो जुड़ रहे हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, मेघा, और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना, और ये लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग से आगाज़ हुआ सुन बेलिया। और आज कार्यक्रम में एक ही कलाकार में राम लक्ष्मण जी को याद किया जा रहा है। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार का है। लिखते हैं आज फिल्म जगत के मशहूर संगीतकार राम लक्ष्मण के बारे में बेहतरीन बातें, रोचक किस्से और नगमे सुनवाए जा रहे हैं। हमें भी बेहतरीन जानकारी मिल रही है, हमें भी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अगला संदेश ग्राउंड फ्रांसिस से है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी का। अगले संदेश के साथ है संजय ढींगिया, संजय ढींगिया जी जुड़ रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। और हमारे श्रोता हैं श्रवण सिंह गिल, लोहागढ़ ठकुरावाला से, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज जी, और संदीप मक्कड़ जी जुड़ रहे हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुराया जालंधर से। निसार अली जुड़ रहे हैं धनौरी तेलीवाल से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पी एस नुहावकर, निर्मला नुहावकर और विशाल नुहावकर, और लिख रहे हैं कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है। साथ ही राधेश्याम देवगन, चंपा देवगन, राजू नेहा, जगदीश देवगन भवरपुर बसना से जुड़ रहे हैं। अगले संदेश के साथ है छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद असहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर, और देवशंकर तमूरिया, अजय सिंह, अजय देव तमूरिया, पोता मास्टर अली कबीर जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं एक ही कलाकार में राम लक्ष्मण के बारे में सुन रहे हैं, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। तो जी, हमारे बहुत सारे श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं और साथ ही साथ अपने संदेश भी भेज रहे हैं। तो चलिए अब सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जो है फिल्म हम आपके हैं कौन से, आवाज़ SP बाला सुब्रमण्यम की।

श्रोताओं, राम लक्ष्मण की असली पहचान सिर्फ रोमांटिक गानों तक सीमित नहीं थी, उनकी धुनों में भारतीय पारिवारिक माहौल की मिठास भी थी। हम आपके हैं कौन, साल 1994 में आई थी राजश्री प्रोडक्शंस की ये फिल्म, भारतीय परिवारों के लिए एक उत्सव, रिश्तों और परंपराओं को केंद्र में लेकर बनाई गई थी। और इसकी गीत राम लक्ष्मण की खासियत ये थी कि उनकी धुनें सीधे दिल तक पहुँचती थी, वो लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। और एक खास बात यह है कि राम लक्ष्मण के गायकों के साथ काम करने की शैली बिल्कुल अलग थी। फिर आया साल 1999, हम साथ साथ हैं, एक बार फिर सूरज बर जाते, एक बार फिर राजश्री प्रोडक्शन और एक बार फिर राम लक्ष्मण की धुनें। विजय पाटिल ने राजश्री के साथ कई फिल्मों में काम किया, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं उनके करियर के प्रमुख पड़ाव थे। लेकिन राम लक्ष्मण की कहानी को केवल 3 फिल्मों तक सीमित करना उनके पूरे सफर के साथ न्याय नहीं होगा। अपने 4 दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी, भोजपुरी में 150 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, जीपी सिप्पी, अनिल गांगुली, सूरज बड़जात्या जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया। आज की संगीत यात्रा में बस इतना ही। अगली बार जब आप इस तरह का कोई भी गाना सुने तो सिर्फ गायक की आवाज पर मत रुकिएगा, उस धुन के पीछे बैठे उस संगीतकार को भी जरूर याद कीजिएगा जिसने सुरों को कहानी का हिस्सा बनाया। अभी के लिए लेती हूँ आपसे विदा और छोड़े जाती हूँ आपको एक और प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आंखों की जुबान सबसे अलग होती है, जो बात लफ्ज नहीं कह पाते वो अक्सर एक नज़र कह देती है। नमस्कार दोस्तों, मैटनी मेलोडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। आज हम लेकर आए हैं हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया से एक ऐसी थीम जिसके बिना मोहब्बत की कोई कहानी शायद पूरी नहीं होती। आंखें, नजरें, निगाहें, नैन। कभी आंखें प्यार का इजहार करती हैं, कभी इंतजार का, कभी शिकायत का, तो कभी पिछड़ने का दर्द भी आंखें ही बयां कर देती हैं। और हिंदी सिनेमा में तो आंखों को लेकर खूबसूरत गीत दिए हैं कि लगता है जैसे गीतकार ने आंखों में पूरी एक कहानी गढ़ ली हो। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें आंखों की खूबसूरती और उसका जादू दोनों महसूस होता है।

कितनी खूबसूरत बात है ना, बिना कुछ कहे किसी की आंखों से आंखें मिल जाएं और दिल संभल जाए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इसलिए तो मोहब्बत में पहली बातचीत अक्सर शब्दों से नहीं, नजरों से होती है। पुरानी दौर की फिल्मों में आंखों को सिर्फ खूबसूरती का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें भावनाओं की भाषा बना दिया गया। और जब बात आंखों की हो तो अगला गीत भी जैसे इसी कहानी को आगे बढ़ाता है।

दोस्तों जानते हैं, आँखों की सबसे खास बात यही होती है कि वे झूठ बोलना नहीं जानती। चेहरा मुस्कुरा सकता है, होठ कह सकते हैं कुछ नहीं, लेकिन आँखें बता देती हैं कि दिल के अंदर क्या चल रहा है। कभी आँखों में खुशी के आंसू होते हैं तो

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज और कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। और अब सुनते हैं अखियों की दास्तां को बयां करता एक और गीत। फिल्म गूंज उठी शहनाई से आवाजें हैं लता मंगेशकर और गीता दत्त की।

कहा जाता है कि इंसान की आंखें उसके दिल का आईना होती हैं। शायद इसलिए फिल्मों में जब किसी किरदार की भावनाएं शब्दों से ज़्यादा दिखानी होती थी तो कैमरा अक्सर उनकी आंखों पर ठहर जाया करता था। एक नज़र और पूरी कहानी बदल जाती थी। कभी पहली मुलाकात में, कभी विदाई के वक्त, कभी मिलने की खुशी में और कभी जुदाई के दर्द में आंखें हर एहसास की गवाह बनी।

और अब ज़रा उस दौर की ओर चलते हैं जहां मोहब्बत थोड़ी धीमी थी, मुलाकातें कम थी और चिट्ठियों का इंतज़ार लंबा था, और एक नज़र मिल जाना भी कई दिनों की खुशी दे जाता था। ऐसे ही एहसासों से जुड़ा एक बेहद खूबसूरत गीत सुनते हैं।

और इसी के साथ मैटनी मेलोडीज़ के आज के सफ़र में आंखों की भाषा को महसूस करते हुए मैं अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूं। आज हमने जाना कि फिल्मी गीतों में आंखें सिर्फ आंखें नहीं होती, कभी वो ख्वाब होती हैं तो कभी इंतज़ार तो कभी प्यार, कभी आंसू और कभी किसी की पूरी दास्तान। फिर मिलेंगे मैटनी मेलोडीज़ में फिल्मी गीतों की सुनहरी यादों के साथ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

जाने हैं। देखिए कि यहाँ आशिक की कैफियत इतनी नुमाया और गहरी है कि गोया कायनात का हर जर्रा उसके दिल का हाल जानता है। दरख्त, पत्ते, फूल और बाग के सब आशिक के दुख के गवाह बन जाते हैं, सिर्फ महबूब ही बेखबर रहता है। ये शेर हमें इंसानी नफ्सियात की एक अहम हकीकत से रोशनास कराता है। जब इंसान किसी गहरे दुख या मोहब्बत में मुब्तला होता है तो उसे महसूस होता है कि उसका बातिन पूरी दुनिया पर आशकार है। हालांकि जिस शख्स से वो सब कुछ कहना चाहता है वही उसके जज्बात से बेखबर रहता है। यही कमाल मीर का है कि मीर के यहाँ इश्क एक नहायत अहम कैफियत है। जुदाई सिर्फ महबूब से दूरी नहीं बल्कि अपने आप से दूरी का एहसास भी बन जाती है। आशिक की पूरी कायनात महबूब की याद के गिर्द घूमने लगती है। मीर कहते हैं, अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये शेर दर्द की इंतहा को जाहिर करता है। आँख में आंसू आना एक आम इंसानी कैफियत है, लेकिन मीर उस आंसू को खून से ताबीर करके गम की शिद्दत को इंतहाई मुअसर अंदाज में पेश करते हैं। ये मीर का कमाल है। यहाँ इश्क जज्बात की इस तन्हाई को और गहरा कर देती है। उनका शेर देखे जरा कि देख तो दिल कि जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। यहाँ दिल के अंदर उठने वाले गम को धुएं से तशबीह दी गई है। जैसे किसी जलती हुई चीज से धुआं उठता है वैसे ही दिल के अंदर जलते हुए जज्बात से गम का धुआं उठता है। ये दरअसल इंसान के अंदरूनी इस्तराब की तस्वीर है। मीर का इश्क सिर्फ रूमानी जज्बा नहीं बल्कि इंसानी वजूद की एक फलसफियाना कैफियत भी है। वो जिंदगी को देखते हैं तो उसमें बेसबाती महसूस करते हैं और मोहब्बत को देखते हैं तो उसमें फना का इम्कान। इंसान खुशी चाहता है मगर खुशी आर्जी, वो विसाल चाहता है मगर जुदाई का खौफ साथ चलता है। देखे जिंदगी के मुतालिक मीर कहते हैं, हस्ती अपने हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। ये शेर अगरचे बराह रास्त इश्क का बयान नहीं लेकिन मीर की मजमूई फलसफे हयात को समझने में बहुत अहम है। इंसान की हस्ती बुलबुले की तरह नापायदार है और दुनिया की रौनक शराब की मानिंद। इस एहसास बेसबाती का असर मीर के इश्क पर भी पड़ता है। शायद यही वजह है कि उनके यहाँ मोहब्बत में खुशी के साथ एक गहरी उदासी भी मौजूद है। मीर का आशिक दुनिया से बेनियाज नहीं बल्कि दुनिया के दुख से पूरी तरह वाकिफ है। वो मोहब्बत करता है, टूटता है, बिखरता है लेकिन फिर भी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होता। यही मीर के इश्क की अजमत है। उनकी शायरी में खुद कलामी भी बहुत नुमाया है। मीर अक्सर अपने दिल से बात करते हैं, अपने जख्मों को देखते हैं और अपने जज्बात का एहतसाब करते हैं। ये खुद कलामी दरअसल हर उस इंसान की आवाज़ बन जाती है जिसने मोहब्बत की हो, जुदाई सही हो, किसी को खोया हो या अपने अंदर नामालूम दर्द को महसूस किया हो। मीर का कमाल यही है कि वो अपने ज़ाती तजर्बे को इज्तमाई इंसानी तजर्बा बना देते हैं। उनका दुख सिर्फ मीर का दुख नहीं रहता, वो हर उस शख्स का दुख बन जाता है जो मोहब्बत में नाकाम हुआ, जिसे जुदाई ने आजमाया, जिसे तन्हाई का सामना किया, जिसने जिंदगी की बेसबाती को करीब से देखा। वो बरमला कहते हैं, हमारे आगे तेरा जब कसू ने नाम लिया, दिल सितम जदा को हमने थाम थाम लिया। मीर की शायरी में इश्क एक ऐसा आईना है जिसमें हमें इंसानी जिंदगी के बेशुमार सूरतें दिखाई देती हैं। उसमें मोहब्बत भी है और महरूमी भी, उम्मीद भी है और शिकस्त भी, वसल की खुशबू भी है और हिजर की अजियत भी। वो कहते हैं, इश्क माशूक इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। मीर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ अकल से नहीं एहसास से भी पहचाना जाता है। दिल के तजर्बात, आंसू,

0: इंदु प्रकाश की गाई ये गज़ल आपने सुनी। कलाम था मीर तकी मीर का। समीन, मुख्तसर अफसाना नसरी अदब की एक इंतहाई मकबूल सिंफ है। नावल के मुकाबले में अफसाने में ज़िंदगी के एक जुज़ या जाविये को पेश किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका इख्तसार और एक ही वक्त में इसका तासुर छोड़ना है। अफसाना सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं बल्कि ये अपने अहद का आईनादार होता है। तरक्की और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की वजह से इंसान के पास तवील नावल पढ़ने के लिए वक्त नहीं, इसलिए ये इसके मुतबादिल के तौर पर भी कारगर है। और ये माशरे की बुराइयों और नफ्सियाती उलझनों का भी अक्कास है। आइए सुनते हैं अफसाना मोहतरमा उनजिला फारूकी से। उन्वान है नीम रुख तस्वीर ट्रेंड।
1: मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए मरियम ने जैसे ही अपनी फेसबुक वॉल स्क्रॉल की, उसकी फ्रेंड लिस्ट के ज्यादातर लोगों की पोस्ट में एक के बाद दीगरे कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही थीं। किसी ने आंखों तक चेहरा छुपा रखा था, किसी ने बालों की आड़ की हुई थी, कोई हाथ से रुखसार ढापे हुए था और किसी ने तस्वीर को ऐसा जाविया दिया था कि चेहरे का सिर्फ एक हिस्सा नजर आ रहा था। हर तरफ लोगों के चेहरे दिख रहे थे, मुस्कुराते हुए, सोच में डूबे हुए और सबसे ज्यादा आधे चेहरे। सोशल मीडिया पर इन दिनों नीम रुख तस्वीर फैशन, हाफ फेस एस्थेटिक लुक ट्रेंड जो चल रहा था। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर लोगों की ऐसी तस्वीरें गर्दी

कर रही थी। मरियम ने मोबाइल मेज पर रख दिया। लोगों को आखिर पूरा चेहरा दिखाने में क्या कबाहत है? मरियम की ये बात सुनकर सामने बैठी सारा हंस पड़ी। तुम भी कितनी पुरानी सोच रखती हो यार, इसे कहते हैं स्टाइल, मिस्ट्री लुक, मरियम ने बेदिली से कहा। ओहो, मिस्ट्री लुक, जी हाँ, आजकल का यही ट्रेंड है। सारा ने अपना मोबाइल उठाया, कैमरा खोला और बालों को एक ख़ास अंदाज से चेहरे पर गिराया। देखो ये सेल्फी कैसी है, मरियम ने तस्वीर देखी। चेहरे की एक आंख, आधी नाक और होठों का एक किनारा दिखाई दे रहा था। अच्छी है, मरियम ने कहा। सिर्फ अच्छी? हाँ, अरे यार, तुम्हें फ़न और फैशन की कोई समझ ही नहीं है। सारा ने अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी। चंद मिनटों में उसकी पोस्ट पर बहुत से लाइक और कमेंट आने लगे। वाह, खूबसूरत, वंडरफुल, लाजवाब, वगैरह वगैरह। सारा का चेहरा खिल उठा। वो कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी। मरियम खामोश बैठी रही। सारा और मरियम की दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी। दोनों एक साथ पढ़ाई करती, एक साथ इम्तिहान देती और ज़िंदगी के अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ भी निभाती। हालांकि दोनों एक साथ पली बढ़ी, लेकिन दोनों की शख्सियत में कुछ बुनियादी फ़र्क थे। मरियम खामोश तबीयत और संजीदा ख्याल, बातें कम करती और सारा बातें बहुत करती थी। कभी बेतकल्लुफ़, कभी घुमा फिरा कर, उसकी कुछ बातें फ़ौरन समझ में नहीं आती। वो अपनी गुफ्तगू में नए नए अल्फाज का इस्तेमाल करती। बहुत सी बातों में कई दूसरे मतलब छुपे होते थे। फिर वो बेतकल्लुफाना हंसती और अपने इस अंदाज से कभी कभी मरियम को भी हंसने पर मजबूर कर देती। पिछले कुछ माह से मरियम नोटिस कर रही थी कि आजकल सारा हर शख्स के सामने एक नया रूप इख्तियार कर लेती है। असातिज़ा के सामने संजीदा, दोस्तों के सामने बेतकल्लुफ, बड़ों के सामने बाअदब और ज़रूरत पड़ने पर अजनबियों के सामने ऐसी मासूम कि देखने वाला उसकी हर बात पर फ़ौरन यकीन कर ले। मरियम अक्सर उसे छेड़ती, तुम्हारे अंदर कितने लोग रहते हैं? सारा हंसकर जवाब देती, जितने लोगों की ज़रूरत हो उतने। पहले ये जुमला मजाक लगता था, लेकिन अब नहीं। सोशल मीडिया पर सारा रोज़ाना एक पोस्ट ज़रूर करती। उसकी हर तस्वीर पर सैकड़ों रद्दअमल आते। कभी वो किताब हाथ में लिए होती, कभी खिड़की के पास बैठे कॉफ़ी मग हाथ में लिए पोज देती, कभी बारिश में भीग रही होती और उसकी तकरीबन हर तस्वीर में पूरा चेहरा नज़र नहीं आता। मरियम ने एक दिन सारा से पूछ ही लिया, तुम पूरा चेहरा क्यों नहीं दिखाती? सारा ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, पूरा चेहरा दिखा दिया तो लोग क्या देखेंगे, तुम और तुम्हारा चेहरा। नहीं यार, मरियम ने उसे गौर से देखा। चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, सारा ने बात बदल दी और दोनों कैंटीन की तरफ चल दी। कुछ अरसे बाद सारा के फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पर उसकी मकबूलियत बढ़ने लगी। उसकी तस्वीर पहले से ज़्यादा खूबसूरत थी। वो नई नई जगह घूमने जाती और वहाँ के अच्छे अच्छे स्नैप वीडियो पोस्ट करती। लोग उसकी शख्सियत के बारे में कयास लगाते। उसकी तस्वीर पर तरह तरह के कमेंट्स आते। सारा ये पढ़कर बहुत खुश होती। पहले वो मरियम से फ़ोन पर खूब बातें करती थी। आज उसे इतने लाइक्स मिले, आज उसकी पोस्ट को इतने लोगों ने देखा। लेकिन अब वो अपनी सोशल लाइफ में इतनी मसरूफ हो गई थी कि मरियम के साथ तवील गुफ्तगू तो क्या करती, मैसेज में भी उनकी कम बातें होने लगीं। अब बस कॉलेज में ही उनकी मुलाकात होती। मरियम जानती थी कि लोगों को हकीकत से ज़्यादा राज पसंद हैं और बातिन से ज़्यादा ज़ाहिर। एक मुकम्मल चेहरा इंसान को आम बना देता है और छुपा चेहरा सारा को ख़ास बना रहा था। एक दिन मरियम ने सारा को कैंटीन बुलाया। तुम्हें नहीं लगता तुम बदल गई हो? क्या मतलब? शायद हम मकबूलियत के खुमार में वही बनने लगते हैं जो हकीकत में नहीं होते, सारा ने कह कहा लगाया। आजकल तुम बहुत फलसफी बन गई हो। और तुम? मैं लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। अच्छी बात है, इंजॉय करो। हाँ यार, याद आया, मुझे जल्दी निकलना है, बाद में बात करते हैं। अरे कॉफ़ी तो ख़त्म कर लो, आराम से चली जाना, शाम में मिलते हैं, अभी घर नहीं जाना। सारा बैग उठाती तेज़ कदमों से कैंटीन से बाहर निकल गई। मरियम बुरा नहीं मानना यार, जल्दी ही मिलते हैं, मरियम उसे जाते हुए देखती रही। कुछ माह बाद सारा और मरियम अपने तालीमी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई यूनिवर्सिटी गईं। सारा की सोशल मीडिया पर मकबूलियत देखकर कुछ लोग उससे काफ़ी मुतासिर होते। पहले दिन जब दोनों यूनिवर्सिटी गईं तो सारा बहुत पुरएतमाद नज़र आई। नर्म लहजा, नपीतुली गुफ्तगू, बात करने का एक नया और ख़ास अंदाज़। प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। डिपार्टमेंट में भी लोग उसे पसंद करने लगे। लेकिन उन्हीं दिनों एक अजीब बात हुई। जिस काम का क्रेडिट मरियम को मिलना चाहिए था, सारा उसे अपनी तरफ खींच लेती। जिस गलती की जिम्मेदारी सारा की होती, वो बड़ी महारत के साथ मरियम के सर डाल देती।

0: वो कभी बराह रास्त मरियम से कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ हालात को इस तरह मोड़ देती कि मरियम खुद कसूरवार दिखाई देने लगे। उसके इस रवैये से मरियम हैरान थी। वो सारा से बात करना चाहती थी, लेकिन सारा मसरूफियत का बहाना बनाकर बात टाल देती। एक दिन यूनिवर्सिटी से दोनों साथ हॉस्टल जा रही थी। मरियम ने सारा से कहा, तुम बिल्कुल बदल गई हो। सारा ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ। छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लिया करो यार, मैं बहुत सी बातें दरगुजर करती हूँ सारा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सारा चिढ़ गई, ये क्या बातें करने लगी हो? अच्छा, क्या नजर आती हूँ मैं? नहीं सारा, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे अंदर न जाने कितना जहर भरा हुआ है। तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हें नहीं लगता? साथ होकर भी तुम मुझे इग्नोर करती हो, लोगों के सामने तुम मेरे साथ अजनबियों की तरह पेश आती हो। तुम्हें हुआ क्या है? तुम चाहती क्या हो? जब सर हमें ये प्रोजेक्ट दे रहे थे तो तुम मना कर देती अगर मेरे साथ काम नहीं करना था। सारा का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे समझ नहीं रही हो यार, मैं सब समझ रही हूँ और अब तुम्हें पहले से बेहतर समझने लगी हूँ। मरियम ने दबे अल्फाज में बात ख़त्म की और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे की तरफ चल दी। सारा ने उसे नहीं रोका और कमरे तक पहुँचने के लिए लिफ्ट का इंतज़ार करने लगी। हॉस्टल पहुँचते ही सारा ने अपनी एक नई तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में उसके चेहरे का सिर्फ एक रुख दिखाई दे रहा था और दूसरे रुख पर गहरा साया था। चूँकि सारा अब सिर्फ मरियम की दोस्त ही नहीं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, अब लोग उसे ज़्यादा पैगाम भेजते। बहुत से लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त से करीब होते हुए भी बहुत दूर हो गई थी। एक दिन गुजर गया। मुंबई आने के बाद रात ऐसा पहली बार हुआ कि उन दोनों ने साथ खाना नहीं खाया। रात को सारा अच्छे से सो नहीं पाई। उसके जहन में मरियम के साथ हुई बातें गर्दिश कर रही थी। सारी बातें भूलने की कोशिश में फ़ोन चलाते चलाते कब उसकी आँख लग गई पता ही नहीं चला। उसकी नींद खुली तो 11 बज रहे थे, आज संडे था। वो जब आईने के सामने आई तो पहली बार उसे अपना चेहरा अजीब लगा। नहीं, चेहरा अजीब नहीं था, अजीब वो किरदार था जो अरसे से उसके चेहरे के पीछे छुपकर अदाकारी कर रहा था। सारा ने कैमरा ऑन किया। इस बार उसने अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वो अपने आप को कैमरे में गौर से देखने लगी। लोग कैसे किसी चेहरे को देखकर किरदार का अंदाज़ा लगा लेते हैं। चेहरे खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन असल खूबसूरती इंसान के रवैये अच्छे अखलाक में होती है। खुलूस से पेश आने में किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं होती। उसने बेदिली से कैमरा बंद कर दिया। वो बैठ गई और मरियम के साथ किए गए अपने पिछले एक हफ्ते के सलूक पर निदामत करने लगी। वो तेज़ी से बाहर निकली। उसने मरियम के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मरियम ने दरवाज़ा खोला, सारा जल्दी से मरियम के गले लग गई। प्यारी मरियम, सॉरी यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ ये सब क्या हो रहा है हमारे दरमियान। मैं तुम्हारी दिल आज़ारी कैसे कर सकती हूँ? दिल से माजरत खा हूँ यार, प्लीज़। इस वक्त दोनों की आंखें नम थीं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए, सारी बदगुमानियाँ ख़त्म हो गईं। मरियम ने उसे अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, कॉफ़ी पियोगी? सारा ने बेसाख्ता कहा, हाँ यार, चल कहीं बाहर चलते हैं।
1: नीम रुख तस्वीर ट्रेंड। अभी आपने मोहतरमा उनजिला फारूकी से उनका ये अफसाना सुना। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्स अदब, जिसे आपके लिए तरतीब दिया था इंतज़ार अली सैफी ने। और अब वक्त आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्त चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 4 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।

听众朋友们，接下来我们播送印度东北邦的民间歌曲，请享受 Vimal Pradhan 唱的一首民间歌曲。

含义着快速了奔跑的步伐。听众朋友们，接下来我们播送山和山东努莫伊特拉唱的一首歌曲，听众朋友们请享受。

0: तुषार पारासर, संयोजक है शिवनंदन लाल।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
3: आकाश कुमार।
2: और आकाश, सबसे पहले बता देते हैं आज कार्यक्रम में क्या है खास। आज क्रिकेट की बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे एशियन गेम्स की, शूटिंग की, डेविस कप, सुब्रतो कप, चेस, रेसलिंग और एक खास सीरीज जो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं, और एशियन गेम्स में प्रदर्शन की तैयारियों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की।
4: भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर ली है। दूसरे मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। पहले मैच में भी भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए। भारत ने इस लक्ष्य को सिर्फ 14 ओवर और 5 गेंदों में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। भारत की इस जीत में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की पारियों ने अहम भूमिका निभाई। पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक ने इस मैच में भी तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल रहे।

0: इसके बाद लंबे समय से बड़ी पारी का इंतजार कर रहे संजू सैमसन ने महज 22 गेंदों पर 57 रन बना दिए। उनकी पारी में 7 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 11 गेंदों पर 11 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने नाबाद 15 और ईशान किशन ने नाबाद 38 रन बनाकर भारत को आसानी से जीत तक पहुँचाया। अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। रहमानुल्ला गुरबाज बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इसके बाद कप्तान इब्राहिम जादरान ने सेदुकुल्ला अटल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। इब्राहिम ने 33 गेंदों पर 37 रन बनाए, जबकि अटल के बल्ले से 12 रन आए। अफगानिस्तान ने 67 रन तक 4 विकेट गवा दिए। इसके बाद अजमतुल्ला ओमरजई और दरवेश रसूली ने कुछ देर पारी को संभाला। रसूली ने 15 गेंदों पर 26 रन बनाए। आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी और राशिद खान ने तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 159 रन तक पहुंचाया। दोनों के बीच 28 गेंदों पर 48 रन की साझेदारी हुई। नबी ने 20 और राशिद खान ने 28 रन बनाए। भारत की ओर से नीतीश रेड्डी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 3 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले, जबकि जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि विश्नोई ने 1-1 विकेट हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये लगातार दूसरी सीरीज की जीत है। इस जीत के साथ भारत के विकेटकीपर बैट्समैन संजू सैमसन ने अपनी पारी के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इट्स द नेचर ऑफ द फॉर्मेट। आई थिंक द नेचर ऑफ द वे वी हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स। सो वी आर एक्चुअली द वर्ल्ड चैंपियंस नाउ एंड वी हैव अ फॉर्मेट एंड अप्रोच विच हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। सो वी आर जस्ट फॉलोइंग इट एज वी वर फॉलोइंग इट लास्ट 2-3 इयर्स। सो जस्ट वॉचिंग द बॉल एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम आउट इन द पावर प्ले। समटाइम्स इट वर्क्स आउट वेल, sometimes it doesn't works out well. So I think after few failures you definitely go through a lot. Being an Indian cricketer, it's not easy to face failures, but that's where my experience comes in. I think I try to shut out the noise and try to be confident and try to come out and still keep scoring at a high strike rate, even taking the chances, even taking the knowing that if I fail again I'll be facing a lot of noise again. But I think that's the way we are built here in Indian cricket and I just go out there and try to score maximum and contribute.
0: अब आइए चलते हैं एशियन गेम्स के एक स्पेशल सीरीज की तरफ, जहां एपिसोड 8 में आज हम सुनेंगे क्रिकेट, गोल्फ, ई स्पोर्ट्स, आर्टिस्टिक्स, जिमनास्टिक्स। इसमें भारत की स्क्वाड, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रिपरेशंस और एक्सपेक्टेशंस क्या है, दीपिका की रिपोर्ट में।
2: खेलों का सबसे बड़ा एशियाई मंच एक बार फिर तिरंगा लहराने को तैयार है। जापान का आइची नागोया शहर और दुनिया भर के एशियाई खिलाड़ी साल 2026 के एशियन गेम्स के लिए तैयार हैं। भारत के लिए भी यह सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अपनी पिछली उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का एक और मौका है। हांगझो एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 पदक अपने नाम किए थे और अब सवाल है, क्या नागोया में भारतीय खिलाड़ी इस प्रदर्शन को और आगे ले जा पाएंगे? आज की इस विशेष प्रस्तुति में बात करेंगे 4 अलग अलग खेलों की, क्रिकेट, गोल्फ, आर्टिस्टिक जिमनास्टिक और ई स्पोर्ट्स। 4 खेल, 4 अलग चुनौतियां, लेकिन लक्ष्य एक, भारत के लिए शानदार प्रदर्शन। इस खास प्रस्तुति में आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। नजर डालते हैं एशियन गेम्स में क्रिकेट के इतिहास पर। एशियन गेम्स में क्रिकेट का सफर छोटा है। क्रिकेट पहली बार 2010 के ग्वांजू एशियन गेम्स में शामिल किया गया था। इसके बाद यह 2014 इंचियोन में भी खेला गया था, लेकिन 2018 जकार्ता पालेमगांव एशियन गेम्स में क्रिकेट को कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इसके बाद 2022 हांगझो एशियन गेम्स में क्रिकेट की वापसी हुई। भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पहली बार एशियन गेम्स क्रिकेट में हिस्सा लिया और दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। भारत की महिला टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण जीता, जबकि पुरुष टीम ने फाइनल मुकाबला बारिश से प्रभावित होने के कारण बेहतर वरीयता के आधार पर अफगानिस्तान के खिलाफ स्वर्ण पदक हासिल किया। 2010 ग्वांजू की बात करें तो भारत ने क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया था। 2014 इंचियोन में भारत भी इस बार एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं था। 2018 जकार्ता में क्रिकेट शामिल ही नहीं था। 2022 हांगझो एशियन गेम्स में पुरुष और महिला दोनों ने स्वर्ण पदक जीता था और 2026 आइची नागोया भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब बचाने उतरेगा। एशियन गेम्स में क्रिकेट का इतिहास भले ही छोटा हो, लेकिन भारत के लिए इसकी शुरुआत

बेहद सुनहरी रही। भारत इस बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अपने पिछले स्वर्ण पदक को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगा। हांगझो में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था, यानी नागोया में चुनौती सिर्फ पदक जीतने की नहीं बल्कि अब खिताबी प्रदर्शन को दोहराने की भी होगी। पुरुष टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है और तिलक वर्मा उपकप्तान है। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नितिश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि टीम में एक बदलाव भी हुआ है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हुए और उनकी जगह यश ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। महिला टीम की बात करें तो हरमनप्रीत कौर कप्तान है और स्मृति मंधाना उपकप्तान है। टीम में दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स जैसी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम में भारत की तैयारी का एक अहम पहलू होगा T20 प्रारूप में तेजी से रन बनाना, पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल और दबाव वाले मुकाबलों में विकेट हासिल करना और सबसे अहम जापान की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को जल्दी ढालना, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में एक छोटी सी गलती भी पूरे अभियान का रुख बदल सकती है। जहां हर शॉट मायने रखता है, यानी कि अब बात गोल्फ की करेंगे। क्रिकेट के शोर से दूर यहाँ मुकाबला शांत वातावरण में, लेकिन दबाव उतना ही बड़ा। गोल्फ में एक एक शॉट महत्वपूर्ण होता है और कई बार आखिरी कुछ होल भी पदक का फैसला करते हैं। भारत की 6 सदस्य टीम में पुरुष वर्ग में युवराज संधु, वीर अहलावत और सप्तक तलवार शामिल है और वही महिला वर्ग की बात करें तो भारत की चुनौती संभालेंगी अदिति अशोक, दिशा डागर और प्रणवी उर्स। गोल्फ में भारत का एशियन गेम्स इतिहास भी शानदार रहा है। भारत ने इस खेल में अब तक 3 स्वर्ण और 4 रजत समेत 7 पदक जीते हैं। हांगझो में अदिति अशोक ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता था। अब नागोया में अदिति के साथ दिशा डागर और प्रणवी उर्स पर भी निगाहें रहेंगी। गोल्फ में तैयारी का मतलब सिर्फ अच्छे शॉट लगाना नहीं है, इसके अलावा कोर्स को समझना, हवा की दिशा को पढ़ना, क्लब का सही इस्तेमाल करना और सबसे बढ़कर पूरे 4 राउंड तक मानसिक एकाग्रता बनाए रखना, यही इस खेल की असली चुनौती है। ताकत, संतुलन और सटीकता पर नजर रखने की बारी है अब, यानी कि बात करेंगे अब आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की। यह ऐसा खेल जहां खिलाड़ी के वर्षों की मेहनत कुछ मिनटों के प्रदर्शन में दिखाई देती है। एक छोटी सी गलती, एक गलत लैंडिंग और स्कोर पर उसका असर तुरंत दिखाई देता है। भारत की ओर से आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में प्रणति नायक पर नजरें होंगी। प्रणति भारत की अनुभवी जिम्नास्टों में शामिल है और ओलंपिक स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वॉल्ट स्पर्धा में उनके पास एशियन चैंपियनशिप के पदक भी हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अब नागोया में चुनौती होगी मुश्किल रूटीन को पूरी सटीकता के साथ पूरा करना, लैंडिंग को स्थिर रखना और दबाव के बीच अपनी लय बनाए रखना। जिम्नास्टिक्स में ताकत और लचीलापन जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है आत्मविश्वास और मानसिक नियंत्रण, क्योंकि यहां खिलाड़ी को अपने शरीर के हर मूवमेंट पर नियंत्रण रखना होगा। अब चलते हैं डिजिटल दुनिया की ओर, यानी कि ई स्पोर्ट्स, डिजिटल दुनिया का नया खेल मैदान जिसने खासकर युवाओं के बीच खेलों की दुनिया को एक नया रूप दिया है। जी हाँ, ई स्पोर्ट्स। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला यह खेल अब अंतरराष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन चुका है। 2026 एशियन गेम्स के लिए भारत का 15 सदस्यीय ई स्पोर्ट्स दल 4 गेमिंग टाइटल्स में मुकाबला करेगा और वो टाइटल्स हैं लीग ऑफ लेजेंड्स, पोकेमोन यूनाइट, ई फुटबॉल और पोयो पोयो चैंपियंस। लीग ऑफ लेजेंड्स में भारत की टीम में अहमद शाहिद इसरार, राहुल बिष्ट, सनिध्या मलिक, मिहिर रंजन, आकाश शांडिल्य और कप्तान अक्षज शेनॉय शामिल हैं। पोकेमोन यूनाइट में 6 सदस्य टीम है, वहीं ई फुटबॉल में चिन्मय साहू और दानियल शकील पटेल, जबकि पोयो पोयो चैंपियंस में पारितोष भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हांगझो एशियन गेम्स में भारत की लीग ऑफ लेजेंड्स टीम 5वें स्थान पर रही थी, यानी कि इस बार भारतीय खिलाड़ियों के पास पिछले अनुभव को इस्तेमाल करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने का मौका है। ई स्पोर्ट्स में तैयारी थोड़ी अलग होती है, वहीं रणनीति बेहद महत्वपूर्ण है। टीम के खिलाड़ियों के बीच तालमेल, विरोधी की रणनीति को पढ़ना, फैसले लेने की गति और लंबे मुकाबलों में

0: में मानसिक एकाग्रता, इन सबका सीधा असर परिणाम पर पड़ता है। चार खेल एक लक्ष्य। तो क्रिकेट से लेकर ई स्पोर्ट्स तक हम देख रहे हैं भारतीय खेलों की एक ऐसी तस्वीर जिसमें अनुभव भी है और नई प्रतिभा भी। अगर इन चारों खेलों को एक साथ देखें तो भारत के सामने चार बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियां हैं। क्रिकेट में टीम वर्क और बड़े मुकाबलों का दबाव महत्वपूर्ण होगा। गोल्फ में धैर्य, रणनीति और लगातार चार राउंड तक एकाग्रता जरूरी है। वहीं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में तकनीकी सटीकता, संतुलन और मुश्किल रूटीन को बिना गलती के पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। और ई स्पोर्ट्स में रणनीति, स्पीड, टीम कम्युनिकेशन और डिजिटल स्पर्धा निर्णायक भूमिका निभाएगी। इन चार खेलों में भारतीय दल का अनुभव अलग अलग है, लेकिन एक चीज समान है, तैयारी और दबाव को प्रदर्शन में बदलने की चुनौती। भारत ने हांगझोउ में 107 पदकों के साथ अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ एशियन गेम्स प्रदर्शन किया था। अब आईची नागोया में भारतीय दल के सामने उस प्रदर्शन की निरंतरता बनाए रखने की चुनौती है। तो क्रिकेट के मैदान से लेकर गोल्फ के ग्रीन तक, जिम्नास्टिक के फ्लोर से लेकर ई स्पोर्ट्स के डिजिटल एरिना तक, भारत की एक नई खेल कहानी कई अलग अलग रंगों में दिखाई देगी। कुछ खिलाड़ी अनुभव के साथ उतरेंगे, कुछ युवा पहली बार एशियन गेम्स के मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लक्ष्य एक ही है, तिरंगा ऊंचा रहे, भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, देश को गर्व करने के लिए एक नया अवसर मिले। आईची नागोया में भारत की इस बहुआयामी खेल यात्रा पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ जीत का जज्बा, मेहनत का विश्वास और तिरंगे के लिए पूरा प्रयास। और अब बात कर लेते हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन, जो पोर्पेटो इटली में खेला जा रहा है, और उस पर खास रिपोर्ट आपको सुना रहे हैं मेरे सहयोगी आकाश कुमार।
1: इटली के पोर्पेटो में चल रहे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में शॉटगन स्पर्धाओं के मुकाबले जारी हैं। स्केट जूनियर वर्ग की क्वालिफिकेशन में भारतीय निशानेबाज फाइनल में जगह नहीं बना सके। पुरुषों के स्केट जूनियर क्वालिफिकेशन में भारत के हरविजन सिंह 12वें स्थान पर रहे। ईशान सिंह लिब्रा ने 22वां स्थान हासिल किया, जबकि गुरफतेह सिंह संधू 37वें और जोरावर सिंह बेदी 52वें स्थान पर रहे। इस स्पर्धा में मेजबान इटली के मार्को कोको ने पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं महिला स्केट जूनियर क्वालिफिकेशंस में भी भारतीय निशानेबाज फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। भारत की परमीत कौर 14वें स्थान पर रहीं। संयोगिता शेखावत ने 23वां स्थान हासिल किया। वेंकट लक्ष्मी लुक्कू ने 30वां और कामना उदावत ने 31वां स्थान हासिल किया। महिला स्किट में भी इटली की एले ओनोआरा रूटा ने शीर्ष स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम

0: कि उसकी वैरायटी का क्या करेक्टर, क्या नेचर है। इसीलिए जो एआई है, इसका सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया गया है वो डाटा कलेक्शन है। आपको पहले से वैरायटल सिनेरियो एक फिक्स हो रहेगा आपके पास कि ये प्रजाति आपने लगाई है, इस प्रजाति का मैच्योरिटी पीरियड इतना है। उसके साथ जो क्लाइमेटिक फैक्टर रिएक्ट करते हैं उनके साथ हम उसको कोरिलेट करते हैं, और वो बैकग्राउंड का जो डाटा है उसी से ही हमारा एआई कैलकुलेट करता है कि अब इतने टेम्परेचर पर इतने ड्यूरेशन के बाद में इसमें इतनी मैच्योरिटीज होनी प्रारंभ हो जाती है। तो यही चीज़ें सारी डाटा बेस जनरेट की जाती है, उसी का एल्गोरिदम बनाया जाता है कि भाई आपकी फसल में किस समय, और जो एक कैरेक्टर होते हैं मैच्योरिटी के कैरेक्टर हैं या उसमें रिकवरी के कैरेक्टर हैं जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं, वे ब्रिक्स वैरायटी में, जैसे हम नॉर्मली पूरी फसल हार्वेस्ट नहीं करनी है, एक सिंपल हम रिफ्रैक्टोमीटर होता है उससे भी हम मात्र एक ड्रॉप के माध्यम से, आपका पूरा गन्ना खड़ा है, पूरी फसल खड़ी है आपके खेत में, एक क्रॉप में, एक प्लांट में एक ड्रॉप हम उसकी लेंगे, उससे रिफ्रैक्टोमीटर पे हम डालेंगे, उससे रिएक्ट कर जाएगा और वहीं पर हम उसका एनालिसिस करके बता देंगे कि ये प्लांट की फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्ट टाइप की शो कर रही है, इसमें इतना ब्रिक्स है, इस खेत में इतने पौधे इस टाइप के फिनोटिपिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, इट मीन्स इसमें इतनी ब्रिक्स के परसेंटेज यहाँ पर शो हो रही है। ये सारा डाटा ही एआई है, उसी का ही हम बेस
1: जी
0: बनाते
1: जी
0: हैं।
1: जी एक और फोन आ गया जी। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
2: इंदरवीर सेवतिया नाम, नथुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर।
1: बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। हेलो,
2: नरेश भाई, आप समय समय पे आकाशवाणी प्रसारण केंद्र किसानों की हर समस्या का हल करने के लिए तत्पर रहता है,
1: जी
2: इसके
1: जी
2: लिए आकाशवाणी परिवार बधाई का पात्र है।
1: जी धन्यवाद। देखिए
0: धन्यवाद
1: वह
0: जी,
1: तो
0: धन्यवाद जी।
1: कार्यक्रम ही आप लोगों के लिए है, तो आपकी सेवा तो करनी पड़ेगी ना इंद्रवीर भाई।
2: अरे सब आपकी मेहरबानी है, किसानों की आय दूनी कराने में लगे हैं वैज्ञानिक।
1: कोशिश तो कर रहे हैं
0: जी
1: जी
0: देवतिया जी,
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी।
1: बताए।

0: हाँ, प्रश्न ये है कि अभी पोरी तो गन्ने की पड़ी नहीं है बुयेरू में, लेकिन वो लगभग 5 से और 6 फुट के ऊपर तक बढ़ रहा है,
1: जी,
0: और हमने उसमें आम का भी बाग लगाया है, आम है, नींबू है और बहुत सारी प्रजाति है, तो
1: जी
0: उसके लिए हमें नई तकनीक
1: जी
0: क्या चाहिए और हमें क्या करना है कि जिससे हमारी ईख की पैदावार तो हो,
1: हाँ जी
0: लेकिन और जो उसमें सह फसली पौधे हैं
1: जी जी
0: उनको भी डोज बराबर मिलती रहे, तो
1: जी
0: डॉक्टर साहब इस
1: जी
2: जी बताइए
0: हम आपके
2: डॉक्टर
0: आभारी रहेंगे।
2: जी
1: जी,
2: जी
1: बहुत अच्छा प्रश्न है तेवतिया जी। और क्योंकि आपका एक तरीके से मैं लेके चलूं कि सह फसली में हम किस प्रकार दोनों फसलों का ध्यान रखें कि हमें दोनों फसलों का उत्पादन अच्छा मिले, हमारे गन्ने की फसल का भी उत्पादन अच्छा मिले और उसमें जो हमने सह फसली जो प्लांट लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने वृक्ष प्लांट की बात की है, पौधों की बात की है कि उसमें आपने आम अमरूद इस तरीके के पौधे लिए हैं,
0: लीची के पौधे भी हैं।
1: लीची के पौधे भी हैं। ये जो पौधे हैं लीची के, आम के, अमरूद के, सह फसली के, एक और मैं आपको नियम बता दूं, सह फसली गन्ने के साथ जब भी हम करते हैं उसका नियम ये है कि गन्ने की जो फर्टिलाइजर डोज है वो अलग दी जाएगी बे मुकाबले उसमें जो सह फसली हमने ली है। हम कभी भी एक डोज से दोनों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें प्लांट का बायोमास, प्लांट का शरीर का विज्ञान, जैसे अभी आपने बताया पहले साल की फसल है पौधा, उसमें पोरियां भी नहीं बनी है उस स्तर पे,
0: जी जी
1: क्योंकि वो लेट बोया हुआ होगा गेहूं काटने के आसपास
0: जी
1: का, तो जिस कारण से उसमें अभी तक पोरियां नहीं बनी, क्योंकि यदि हम रेटून की बात करते तो उसमें अभी तक पूरी स्थिति बन जाती। पहला तो ये कि आप उसमें जो बुआई पे यदि फर्टिलाइजर डोज पूरी नहीं दे पाए हैं इस समय, उसमें कोई भी फर्टिलाइजर डोज एडिशनल नहीं दी जा सकती क्योंकि इस समय उसकी जो ग्रोथ स्टेज थी वो पूरी हो चुकी है। अब टेम्परेचर डाउन जाना शुरू होगा, यदि आप अपने पौधे में फिर भी थोड़ी बढ़वार बनाए रखना चाहते हैं तो एक 0-52-34 जो NPK आता है, 0-52-34 आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अब आपकी आगे की स्टेज आने वाली है, उसमें 0-52-34 के बाद 0-0-50, इन दो न्यूट्रेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि
0: 0050 0052
1: 0-52-34 इसमें दो फास्फोरस और पोटास होता है, क्योंकि नाइट्रोजन इस समय अप्लाई नहीं करनी चाहिए।
2: जी
1: और लास्ट की स्टेज जब आप एक और अप्लाई करना चाहेंगे तो 0050 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन आगे से भविष्य में ध्यान ये रखना है कि आपको दोनों ही फसलों का अलग अलग न्यूट्रेंट अप्लाई करने हैं, केवल गन्ने से आप उसकी पूर्ति ना करना। दूसरा, जितने पौधे आपने लगाए हैं मेरी आपसे निवेदन है उनका मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि इसी साल का प्लांटेशन है तो 1 मीटर का जुरिडिक्शन, 1 मीटर चारों तरफ उसके जगह खाली रखना, अन्यथा की दशा में क्या होगा, आपका गन्ना तो अच्छा होगा नो डाउट, बट वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो उसकी रूट हेयर्स डेवलप होंगे वो समय अनुसार जब भी आप उसमें गन्ने में कल्चर ऑपरेशन करेंगे वे टूटती रहेंगी, तो वो उस पौधे की बढ़वार उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए जो ज्योमेट्री आपने लगाई होगी, जो पौधे लगाने का तरीका होगा, वो आप वेल नोन जान अच्छे से जानते हैं, लेकिन दोनों को फर्टिलाइजर अलग अलग तरीके अलग अलग से दें तो ज़्यादा अच्छे से दोनों ही फसल अच्छी होगी, मेरा मानना ये है।
2: इंद्रजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी जो ये चर्चा चल रही थी तो
1: जी
2: मेरे
1: जी
2: दिमाग में भी एक बात आई कि गन्ने के साथ
1: जी
2: सह फसली जो हम फसल लगाते हैं, दूसरी फसल लगाते हैं,
1: जी
2: तो आप क्या सुझाव देते हैं कौन सी फसल? जैसे इंद्रवीर भाई ने लगा दिए पेड़, फल
1: जी
2: के पेड़ लगाए हैं, सारे बड़े होंगे, वो
1: जी
2: सारे बड़े हो जाएंगे
1: जी जी
2: तो और लंबे चलेंगे, है
1: जी बिल्कुल।
2: ना? तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनमें सबसे ज्यादा फायदा किसान को हो सकता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस समय शरदकालीन गन्ना बुआई चल रही है। हम अपने मुख्य टॉपिक पे फिर दोबारा
2: फिर
1: से
2: आएंगे
1: आएंगे,
2: आएंगे
1: क्योंकि ये
2: आएंगे, और
1: प्रश्न
2: छोड़ा
1: आया
2: नहीं
1: था तो
2: हमने।
1: किसान का, इसलिए
2: हाँ,
1: उधर
2: छोड़ा
1: जाने का
2: नहीं
1: हो
2: है
1: गया।
2: अभी। हाँ
1: हाँ, वर्तमान समय में शरदकालीन गन्ना बुआई का समय है। गन्ने के साथ सह फसली के लिए यदि आप सबसे अच्छा, बेहद अच्छे उत्पादन चाहते हैं तो आप गन्ने के साथ प्याज की खेती कर सकते हैं, लहसुन की खेती कर सकते हैं, आलू की खेती कर सकते हैं, और बड़े स्तर पर यदि आप कर रहे हैं और आपको श्रमिक की थोड़ी समस्या है तो आप गन्ने के साथ सरसों की सह फसली खेती अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक और ध्यान आपको रखना है, और नेक्स्ट जब अगली टॉक होगी उसमें हम वैसे विस्तार से आपको बताएंगे। मेरा निवेदन है कि आप जब भी शरदकालीन गन्ने की बुआई करें हमेशा ट्रेंच में करें, ताकि उनके बीच का स्पेस जो हमारे गन्ने की बढ़वार है उसको, गन्ने को भी पूरा मिले और सह फसली को भी पूरा मिले। ऐसा ना करें

0: खदान भी धीमे आप गन्ने की बुआई करके और फिर आप उसमें सह फसली लगा दें, तो आपकी हो सकता है सह फसली वाली फसल अच्छी हो जाए लेकिन गन्ना अच्छा नहीं होगा, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पिछले 22 साल का अनुभव है। मैं इसमें देख रहा हूं कि यदि हम सह फसली और वो दोनों को एक साथ कर देते हैं और कम दूरी पर कर देते हैं तो कंपटीशन होता है, क्योंकि जो हमारी गन्ने की फसल है वो एक साल की फसल है
1: जी जी जी
0: और जो हमारी सह फसली है वो हार्डली 2 महीने 3 महीने की फसल है, तो वो अपना लाइफ साइकिल जल्दी से पूरा करने के लिए न्यूट्रेंट जल्दी एडजस्ट करती है और उस समय गन्ने पे टिलरिंग को क्राइसिस आता है क्योंकि न्यूट्रिएंट का अपटेक वो सहायक फसलें उसमें ले लेती है सह फसलें।
1: अब डॉक्टर साहब आ जाते हैं अपने
0: जी
1: मुख्य विषय
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी में कंटिन्यू कर रहा था।
1: हाँ जी बताएं।
0: मैं एक चीज जोड़ रहा था अभी, डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे किसान में और एआई में हम किस तरीके से कह सकते हैं कि ये बेनिफिशियल ज्यादा होगा।
1: जी
0: नॉलेज डोमेन है।
1: एक फोन आ गया डॉक्टर साहब
0: जी,
1: बिल्कुल पहले फोन ले लेते हैं
0: जी।
1: हेलो हेलो। नहीं जी नहीं, मेरे ख्याल से कट गया है जी। बताएं आप डॉक्टर साहब। हेलो।
2: हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: मैं बंसीलाल गांव मानावाली फतेहबाद हरियाणा से जी।
1: जी बंसीलाल जी बताएं क्या सवाल है?
2: मेरे समस्या ये जी, हमने 2 एकड़ में गन्ना लगा रखे है, 85 नंबर है
0: जी।
2: हाँ जी
1: बोलते रहो।
2: तो उसमें मान लो आपके आपके पास 2 पौधे या 3 पौधे आपके पास पीड़े हो गए, उससे 20 फुट आगे 2-4 पौधे पीड़े हो गए और हमने फंगस की 2 स्प्रे भी डाल दी उसके अंदर है
0: जी,
2: अभी तो वो ठीक नहीं होने लग रहा जी।
0: देखो पौधे पीले होने के कारण फैक्टर कहीं हो सकते हैं, क्योंकि पीलापन, मैं इसीलिए अपने सेंटर पे भी सुझाव देता हूं किसानों का, मेरा बड़े उसमें बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन है, आप जब भी किसी चीज की दवाई गन्ने में या फसल में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले पौधा जरूर लेकर आएं। अब मैं यहाँ पर पीलेपन के कारण बताता हूँ, पीला वेस्टर्न यूपी में रेड रोट के कारण भी हो रहा है, लाल सड़न रोग के कारण भी हो रहा है।
2: नहीं, विल्ट लाल, के... वो लाल तो नहीं है जी, कहीं से लाल नहीं, नहीं, नहीं है, वो पौधा पीला दिखने लग रहा है।
0: पीले होने पे ही आ रहा हूँ अभी, एक आपने कारण
1: बताया जी,
0: अभी कारण गिनो कितने हो सकते हैं पीला होने के। दूसरा विल्ट एक बीमारी होती है, उसके कारण भी पीला होता है। तीसरा रूट बोरर के कारण भी पीला होता है। चौथा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण भी पीला होता है। पांचवा बागपत डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, शामली डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न यूपी का मैं जहां तक अध्ययन किया है, आज की डेट में व्हाइट फ्लाई के कारण बहुत सारी पत्तियां पीली हो गई हैं। अब हम उन चीजों को कोरिलेट करने के लिए मैं आपसे पहले जब उस पॉइंट पर लेके आता हूं, जैसे आपने बताया 1-2 झुंड पीला हो रहा है, निवेदन है या तो आप उस गन्ने का डाइसेक्शन, पूरा गन्ना ऊपर से नीचे तक चीर के देखें, उसके अंदर से कहीं कोई लाल उस पे सिम्टम तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाहरी सिम्टम लाल नजर नहीं आएंगे, उसके अंदर से सिम्टम लाल नजर आएंगे। यदि लाल स्पॉट नजर आ रहे हैं, लाल और सफेद रंग के धब्बे हैं, हो सकता है रेड रूट है। यदि लाल रंग के धब्बे नहीं है, पित एक अंदर होता है, उसके अंदर एक छोटी सी हल्की सी लाइन बनती है, वो धीरे धीरे बड़ी होती हुई चली जाती है, जिसमें पित्त डेवलप हो जाता है, अंदर से गन्ना खोखला होना शुरू हो जाता है, लाल नहीं होगा उस समय प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन बीच से खोखला हो जाएगा। इस प्रकार के लक्षण विल्ट में नजर आएंगे, पत्तियां पीली हो जाएगी, झुंड वहां पीला हो जाएगा। तीसरी कंडीशन
2: पूरा झुंड
0: पीला हो जाएगा और वो गन्ना यदि आप काटेंगे तो जैसे जब वो पीला होकर सूखेगा तो काटेंगे तो वो कटेगा आसानी से नहीं, वो हार्डनेस की तरफ चला जाएगा, इट मींस वो विल्ट के सिम्टम शो कर रहा है वहां पे। और तीसरा कारण रूट बोरर भी हो सकता है। देखो मैं इसीलिए कहता हूं पौधा सबसे मस्ट है, हम खेती के डॉक्टर ऐसे डॉक्टर है जिनके पास हमारा जो मरीज होता है ना, वो बगैर मरीज के आता है, वो केवल अपने हाइपोथेटिकल लक्षण लेके आ रहा है
1: जी,
0: और
1: जी।
0: जब ह्यूमन बीइंग के आदमियों के डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट के पहले 4 टेस्ट होते हैं, उसके बाद डॉक्टर देखता है कि अब मुझको इसको करना क्या है
1: जी, जी, जी।
0: और हमारे पास सारी ज्योतिष विद्या से होती है, कह लगे जी ज्योतिष विद्या में बता दो। मैं इसलिए कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, मतलब मैं अदरवाइज ना ले, आपसे निवेदन है, आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, जो रिसर्च सेंटर है, जो गन्ने का संस्थान है, आप उस पर पौधा लेकर जरूर जाएं, या फिर
2: है जी हमारे पास फतेहबाद है,
0: बहुत अच्छी बात है, या फिर आप जब मेरे साथ बात कर रहे हैं, नो डाउट मैं आपके हर क्वेरी को सोल्व करने का प्रयास करूंगा, आप वो पौधा अपने हाथ में रख लें, उस पौधे को बीच से चीर के, पौधे को अगोड़े से और जड़ तक का चीर के अपने पास रख लें, जो जो सिम्टम मैं पूछता चला जाऊं आप बताते चले जाए, नो डाउट आपके सभी समस्याओं
1: का भी हो जाएगा,
0: बिल्कुल उसमें कोई दोहरा नहीं है।
1: तो बंसीलाल जी एक बार आप वहां ले जाओ पौधे को,
0: और नहीं तो आप मेरे पास भी भेज सकते हैं, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत फोन कॉल आते हैं पूरे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी सब जगह से।
1: दो काम कर सकते हैं, या तो आप केवीके में ले जाओ
0: जी
1: पौधा, वहां दिखा लो, या

0: पौधा लेके पूरा चीर के डॉक्टर साहब को फोन कर लेना इनके सेंटर पे, और बताते जाना जो ये पूछे तो उससे भी समाधान हो जाएगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब थोड़ी चर्चा और करते हैं अभी।
1: हाँ, नहीं मेरा नहीं। वो अभी प्रश्न मतलब वो अंतर नहीं शुरू हुआ अभी।
0: अंतर जो है ना, अंतर आपका वो शुरू करेंगे क्योंकि समय की थोड़ी कमी
1: अच्छा
0: है, बीच में हमें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, पर जितना समय उसमें आप थोड़ा सा बताइए।
1: मैं कह रहा था डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा शुरुआत की थी, मैं उसी चीज को कोरिलेट करता हूँ कि किसान अपने स्तर से जब एनालिसिस करता है चीजों का, वो नॉलेज कहाँ तक की है, उसको नॉलेज केवल एक ये नॉलेज है कि वो उसको पीलापन को एनालिसिस कर रहा है, उसके थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर को एनालिसिस कर रहा है, उन चीजों में डिफरेंशिएट नहीं करता। जैसे अभी बंसीलाल जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कीड़ा लगा है, बीमारी लगी है या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है।
0: जी, जी।
1: मतलब इतने माइन्यूट लेवल पर जाकर डिफरेंस आता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में और आपके डिजीज में। यही एआई है, इस एल्गोरिथम को इसको कैच करना ही एआई है
0: जी। तो डॉक्टर साहब देखिए, अभी तो विषय हमारा बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है, इस पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमें क्योंकि समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, तो हमें थोड़ा सी देर के लिए विश्राम लेना पड़ेगा।
1: जी
0: बिल्कुल, ओके।
2: आप सुन रहे हैं गन्ने की पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
4: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 7 बजने को है, अब सुनिए हिंदी में समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
6: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
5: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज

0: से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।
3: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम। आज के कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: आज की विशेष फोन इन कार्यक्रम में गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत आज का हमारा विषय है गन्ना फसल में AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, जो कि वैज्ञानिक एवं प्रभारी हैं गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत उत्तर प्रदेश से। और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रऊफ अहमद परे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद पूसा नई दिल्ली से। गन्ना में

0: AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में संबंधित अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप विशेषज्ञ से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हमारा फोन नंबर नोट करें 2342108 2342108 दिल्ली के बाहर के जो हमारे श्रोता हैं वो कोड लगाना ना भूलें, कोड है 011। तो कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं हमारे साथी बैठे हैं नरेश पारासर जी, तो बिना देर की ले चलते हैं आपको स्टूडियो की तरफ।
1: डॉक्टर मल्लिक, डॉक्टर परे, आप दोनों का पुनः हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, फोन आ रहे हैं किसानों के, और मेरे को लगता है कि जो युवा किसान हैं अगर इस समय सुन रहे हैं मेरे को, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप कृषि की तरफ ध्यान दीजिए। आज का विषय खास तौर पे हमारे जो पढ़े लिखे किसान हैं, युवा किसान हैं, जो समझते हैं AI के बारे में, जानते हैं उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है आने वाले समय में, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा। हम बैठे हैं 7:35 तक, तो बहुत समय है। फ़ोन नंबर बता दिए हैं यमुना बहन ने आपको, आप ज़रूर फ़ोन कीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप चर्चा पे आते हैं हम
2: जी,
1: थोड़ा सा समय है लग रहा तो है मेरे को, फ़ोन आ रहा है एक, बट बताइए आप।
2: जी जो
1: आ गया जी, एक फोन पहले फ़ोन ही लेते हैं।
2: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: हेलो,
3: नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं
3: जी? मैं विकास बोल रहा हूँ, से।
1: विकास भाई कहाँ से?
3: जिला बागपत से जी।
1: हाँ जी, बताओ विकास, क्या सवाल है?
3: सर, हमारे गन्ने की फसल में पत्ती काली काली हो रही थी
2: जी,
3: और उस पर व्हाइट भी और ब्लैक फंगस आ जा रही, जो चिपकन सी रहे भित्ती सी भी चिपक रही थी उस पर सर।
2: जो वे चिपकी हुई है सफेद और काले से धब्बे, वो बैक साइड में है पत्ती की उल्टी सतह पे या सीधी सतह पे है?
3: सर वो बैक साइड में भी है और सीधी सतह पे भी है, सीधी तरफ भी है।
2: हाँ, बेसिकली
3: जी सर, मैंने स्प्रे भी कराया था जी।
2: किस चीज का?
3: तो वे हटी नहीं सर।
2: नहीं, स्प्रे किस चीज का किया?
3: स्प्रे जब कराया था।
2: स्प्रे किस चीज का किया?
3: हेलो,
1: स्प्रे किस चीज का किया विकास? कौन सी दवाई स्प्रे करी?
3: सर मैंने स्प्रे करा था, मैंने थायकोफिनेट मिथाइल थी सर, और एमिडा क्लोरोप्राइड थी
2: जी,
3: और प्रोफिनोफोर्स थी
2: जी, बहुत बढ़िया,
3: और एक सर डेल्टा मैथ्रीन थी,
2: बहुत बढ़िया।
3: तो सर मैंने अभी 2 हफ्ते हो गए तब स्प्रे कराया था, लेकिन वे तो हटी नहीं सर, वे और ज्यादा ही सी लग रही सर।
2: बहुत बढ़िया, ये दोनों ही समस्याएं बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ जनपद में देखने को मिल रही है। व्हाइट फ्लाई भी है और माइट भी है।
3: हाँ जी,
2: दोनों ही, क्योंकि पत्ती की निचली सतह पर जब सफेद और काले रंग के धब्बे मिलेंगे तो इट मींस वो व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी के कारण वहां पर सफेद और काले रंग के डॉट डॉट से आपको दिखाई देंगे, और उसके बाद वो पत्ती ऊपर से भी काली पड़ जाएगी। बिल्कुल, मैं उसी की
3: मकड़ी भी बहुत ज्यादा आ रही है।
2: हाँ, मकड़ी
1: वो माइट जो है वो मकड़ी
2: ही है। लेकिन एक चीज मैं इसी के साथ जोड़ता हूँ विकास जी, आपके जुड़ने से पहले मैं खुद ही अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि बागपत जनपद में या शामली जनपद में या मुजफ्फरनगर मेरठ जनपद में ये जो इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है उसके कई कारण हैं। एक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं बताता हूँ कि एक तो जो स्प्रे करने का तरीका है वो, और एक दवाई जो टेक्निकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वे दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। मैं आपको वन बाई वन आग्रह करूँगा। पहला तो ये कि जब भी आप स्प्रे करें, हमेशा एक और निवेदन मैं आपसे करूंगा कि इनका जो लाइफ साइकिल है, चाहे व्हाइट फ्लाई है चाहे माइट है, बेसिकली इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, 10-12-15 दिन में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर देती है। ऐसी परिस्थिति में यदि आपके खेत में आपने स्प्रे किया और आपने 100% उस दवाई आपका अच्छी थी, आपने 100% वो खेत साफ हो गया, लेकिन 99% किसान, जितने भी मैं किसानों से बात करता हूं बागपत में शामली में, मेड़ पर कोई स्प्रे नहीं करता है, रास्ते पर कोई स्प्रे नहीं करता है, खेत के कॉर्नर में खरपतवार जहां पर है वहां पर स्प्रे नहीं करता है। कारण क्या हुआ? हमने अपनी गन्ने की फसल सुरक्षित कर दी, 100% वहां से इंसेक्ट को रिमूव कर दिया,
1: वही हो गया डॉक्टर साहब, पॉइजनस हो गया, निकाल के बाहर गड़ी में डाल दिया,
2: और उसमें वो अल्टरनेट होस्ट के ऊपर वो जिंदा रहती है, जैसे ही 1 सप्ताह 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपके खेत में उस पॉइजन का, उस जहर का असर कम होता है, वो दोबारा से आपके खेत पे अटैक कर, लाइफ साइकिल कम है, वो जल्दी से फिर दोबारा से अंडे दे के आपके वहां पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। पहला तो निवेदन ये है, जब भी अब की बार स्प्रे करें, हमेशा मेड को भी अपनी मान के चलें, पड़ोसी को भी जब स्प्रे करें उसको भी कहें, भाई साहब जब आप स्प्रे कर रहे हैं इस मेड पर भी, ये जो अल्टरनेट

0: भीड़, क्योंकि
1: जी
0: बरसात का मौसम है। पहला तो नियम यही कहता है कि आप मेढ़ को साफ रखें, खरपतवार रहित रहे,
1: जी
0: लेकिन बरसात के मौसम में आपके वहां पर खरपतवार बार बार जो उगते रहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस खरपतवार को भी, और मेढ़ हो चाहे वो रास्ते की साइड हो, उस पर स्प्रे करते रहें, पड़ोसी भी स्प्रे करते हैं। एक तो पहला तो निवेदन यही है, 100% कंट्रोल होगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। दूसरा, केमिकल एसिटामिप्रिड करके आता

0: इंसेक्ट में रेजिस्टेंस ही नहीं आएगी, वो पौधे पर आपका प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ की टेंडेंसी क्या है, मैं एक और विकास जी आपको भी रेफरेंस देते हुए बता देता हूँ कि एक बार आप दुकान पर गए और वहाँ पर आपको क्लोरोसाइपर का कॉम्बिनेशन अच्छा मिल गया, आपने ला के खेत पे स्प्रे कराया उसका रिजल्ट मिला, तो अगली बार दुकान पर जाएंगे तो बोलेंगे वो
1: हाँ
0: क्लोरोसाइप वही
1: वही
0: दवाई
1: दे
0: देना
1: दो।
0: जो पहली बार दी थी, आप उसको ला के फिर ट्राई करेंगे उसका फिर रिजल्ट आएगा, तीसरी बार उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आप ऑब्जेक्शन करेंगे दुकानदार पे भी, कहेगा अब की बार आपने अच्छी दवाई नहीं दी, अब की बार रिजल्ट अच्छा नहीं। नहीं नहीं नहीं हो सकता है दवाई अच्छी हो सकता है दवाई भी गड़बड़ हो, लेकिन जब दवाई अच्छी हो इट मीन्स इंसेक्ट में रेजिस्टेंसी आ गई है, बार बार एक ही
1: सहन शक्ति
0: केमिकल
1: बढ़
0: को,
1: गई उसकी।
0: उसकी सहन शक्ति, इसलिए केमिकल को हमेशा बदलें। दूसरा, मानसून सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन है, सरफेस टेंट जरूर मिलाए, यदि आपने उसमें सरफेस टेंट सिलिकॉन बेस स्टिकर नहीं मिलाया है तो जो हमारी लीफ की सरफेस है वो उस पानी को, उस ड्रॉपलेट्स को बड़ा जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिस कारण से वो वहाँ पर यदि 3 घंटे बाद बारिश हो जाती है, 4 घंटे बाद बारिश हो जाती है, तो उसका दवाई का इंप्रेशन उतना अच्छा उस पौधे पर नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आप उसमें सिलिकॉन बेस स्टिकर सरफेस टेंट ऐड करेंगे तो नो डाउट वो ड्रॉपलेट नहीं बनने देगा और हमारे उस इंसेक्टिसाइड का वहाँ पर इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण है और बड़ा अच्छा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विकास जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हम AI पर चल रहे थे, आवश्यकता इस समय इस मैसेज की भी थी,
1: जी
0: क्योंकि
1: बीच बीच
0: हमारे
1: बीच में
0: क्षेत्र में
1: जी
0: आवश्यकता है
1: जी
0: व्हाइट
1: जी
0: फ्लाई की भी,
1: जी
0: और माइट का भी मैं बता देता हूँ, पत्ती की निचली सतह पर, जहाँ पत्ती की निचली सतह है वहाँ डोट डोट डोट डोट बनाते हुए उस पर लाइनर मिलते हैं, लेकिन उसमें आप, मेरा निवेदन है या तो लाइम सल्फर और प्लस चूने का इस्तेमाल करें, 400 ग्राम सल्फर और 15 ग्राम चूना प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में, या फिर एकेरिसाइट का इस्तेमाल करें, प्रोपोगाइट करके एकेरिसाइट आता है उसका इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे।
1: विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी, कौन बोल रहे
2: जी,
1: हैं?
2: मेरा नाम अब्दुल हमीद है, बिजनौर से बात कर रही हूँ
1: जी अब्दुल भाई,
2: जी।
1: बताएं।
2: बताना ये है, गन्ना तो वैसे सही खड़ा, पर कुछ कुछ टॉप बॉलर का असर दिखाई दे रहा है, गन्ने की बंधाई कराई थी तो
0: जी
2: उसमें हम कौन सी दवाई लगाऊं? कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि नीम का तेल अगर लगाया जाए तो वो क्या फायदेमंद हो सकता है इसमें?
0: वो इनिशियल स्टेज में बिल्कुल फायदेमंद है जी, जब आपका पहली जब पीढ़ी आनी प्रारंभ होती है, क्योंकि टॉप बोरर की 5 पीढ़ियां आती है, सबसे खतरनाक कीट है वेस्टर्न यूपी या हरियाणा पंजाब की बात करूं तो ये सबसे डेंजरस इसलिए क्योंकि 5 पीढ़ी, और अभी भी 5वीं पीढ़ी का समय है। सरप्राइजिंग ये है कि अभी चौथी पीढ़ी अंदर 5वीं पीढ़ी का समय अब चल रहा है, तो अब यदि आपको खेत में लगता है इंटेंसिटी ज्यादा है, और इस विशेष रूप से यदि पौधा है, पेड़ी नहीं है, पौधा है, और क्योंकि वो हम फरवरी और मार्च तक जाएंगे, तो ऐसी दशा में एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल, नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, उसकी एक कंडीशन मैं आपको बताता हूं, आप अपने खेत की मॉनिटरिंग करें, जो हम AI लागू कर रहे हैं या AI का जिक्र कर रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग है, इसी प्रकार की मॉनिटरिंग आपको स्वयं करनी है, मेरे खेत में इस 5वीं ब्रूड का एडल्ट मौत कब आ रहा है, उस मौत को जब वो आपके खेत में तितली दिखाई देनी शुरू हो जाए, उस समय पर किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का, चाहे इमीडा हो, चाहे क्लोरोसाइपर हो, प्रोपेनोपोसाइपर हो, एक स्प्रे आप कर देंगे तो वो मौत वहीं पर समाप्त हो जाएगा, आगे लार्वल स्टेज या एग लेइंग स्टेज
2: पिछले
0: आएगा।
2: उसमें जब हमने लगाया था तो लिसेंटा लगाया था, प्रसन्ना फॉस भी लगाया, सब दवाई लगाते हैं हम।
0: जी जी बहुत अच्छे।
2: अब जो आखिरी वो है, तो मेरा ये वो है, जैसे 0050 लगाए और नीम का तेल लगा के इसका स्प्रे अगर हम कर दे तो क्या सही रहेगा वो या नहीं रहने का,
0: बहुत हद तक
2: या
0: कर,
2: है?
0: नहीं नहीं आप उसकी स्टेज को पहचान लो, यदि तितली बटरफ्लाई मौत स्टेज उसमें आ रही है,
2: नहीं
0: तितली
2: ऐसा
0: जरूर,
2: नहीं है, बहुत मामूली सा, वो अब देखना ना जब हम।
0: मामूली सा आया तो वो नेग्लिजेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों का 0050 बेस्ट रहेगा आपका पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, और इधर आप इसमें नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
2: उससे पहले हमने उसमें वो 52034
0: 0524।
2: लगा, हाँ जीरो
0: बहुत
2: बावन चौंतीस
0: बढ़िया,
2: वो लगाया था,
0: बहुत बढ़िया, बहुत
2: बहुत
0: बढ़िया,
2: अच्छी स्टेज में गन्ना खड़ा, बहुत अच्छा गन्ना खड़ा।
1: बहुत
0: चलो
1: बढ़िया, बहुत
0: अब्दुल
1: बढ़िया
0: भाई
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
2: ठीक
0: शुक्रिया
2: है,
0: आपका
2: बहुत बहुत
0: फोन करने के
2: धन्यवाद जी।
0: लिए।
2: अजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, इतना अपना बहुमूल्य कीमती टाइम हमारे लिए
1: महाराज
2: लगाते हैं। बहुत
1: कार्यक्रम आपके लिए है, बहुत बहुत
2: हाँ जी,
1: शुक्रिया
2: हम तो सुनते हैं और बहुत लाभ उठाते हैं
1: जी,
2: आपकी उससे,
1: शुक्रिया
2: बहुत बहुत आपका भी
1: शुक्रिया
2: बहुत बहुत आभार,
1: जी
2: बहुत बहुत
1: जी
2: धन्यवाद।
1: अगला फोन लेते हैं जी। हेलो जी, कट गया फोन जी डॉक्टर साहब, अब
0: जी
1: AI नहीं हो पाया है, AI पे आ जाते हैं वापस
0: नहीं,
1: जी।
0: तो अभी
1: डॉक्टर
0: जी
1: साहब कुछ कहना चाह रहे
2: जो
1: हैं?
2: अभी चर्चा चल रही थी, क्योंकि जो हमारे साथी हैं, क्योंकि जो पिछले 2 दिन प्रश्न है, इससे हमारे किसान भाई समझ सकते हैं कि

0: क्यों एआई की जरूरत
1: जरूरत
0: है। आप देखिए कि हमारे पहला जो प्रश्न था और हमारे साथी ने उनको बताया कि ये समस्या कितने तरीकों से हो सकती है।
1: डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, रोकूंगा, आपका फोन आ गया। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
2: सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल से।
1: जी सचिन भाई, बताएं क्या सवाल है?
2: सर ये सवाल था कि जो नीम के पौधे होते हैं ना, तो हमारी तरफ नीम के पौधे नहीं हो पाते हैं, सुंडी लग जाती है, इसका कुछ समाधान है?
3: समाधान है जी, नीम का पौधा तो वेस्टर्न यूपी संभल, वेस्टर्न यूपी का मुरादाबाद और आपका बदायूं के बीच का हिस्सा है, बहुत अच्छा, वहाँ पर नीम के पौधे होंगे उसमें नो डाउट। इनिशियल स्टेज में लगती है, किस स्टेज में लगती है उसका थोड़ा एक देखना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के साथ में हम क्लोरोसाइपर के साथ में चलेंगे तो नो डाउट उसकी सुंडी को हम कंट्रोल कर लेंगे।
2: जो ताजी छोटी छोटी मुलायम वो पत्तियां होती हैं ना, वहाँ पे वो उन्हें खाके पत्तों को मोड़ देती हैं और वहाँ पे फिर वो बढ़वार नहीं हो पाती।
3: बिल्कुल, आप दो स्प्रे करें, पहला प्रोफेनोफोस साइपर का इस्तेमाल करें, दूसरा थायो लैम्डा का एक इस्तेमाल करें, थोड़ा लैम्डा हार्ड नेचर में होती है, आप दोनों में एक एक स्प्रे करेंगे तो नो डाउट आपका पौधा सर्वाइव करेगा और उस इंसेक्ट को वहीं पर मारने के लिए कारगर होंगे।
2: एक लैम्डा और
3: थायो लैम्डा करके कॉम्बिनेशन आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: ठीक है,
3: ठीक है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। डॉक्टर साहब
0: जी, जो हम बात कर रहे थे कि जैसे हम कि बीमारी की बात कर रहे थे कि वो कितने वजह से हो सकती है, उनको सिम्टम दिख रहा है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, कोई और चीज़ भी हो सकता है। अब कितनी बड़ी समस्या है कि इसको निकालना कि किस वजह से, क्योंकि तभी इसी इसको मैनेज कर पाएंगे।
1: डॉक्टर साहब ने पांच वजह ही बताई,
0: पांच वजह और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अब यहीं पर है कि अगर हमारे पास इन वजहों का डेटाबेस होता कि इस वजह से ये चेंज आती है, इस वजह से ये चेंज आती है, तो एक मॉडल से मिली सेकंड्स में डिसीजन मिल सकता है। जहां आप पूरा दिन लगा देंगे एक एक चीज को, कितने रिसोर्सेज है। दूसरी बात, जो दूसरा प्रश्न था कि हमारे किसान भाई ने पूछा कि ये बीमारी, और हमारे साथी ने पूछा कि ऊपर के सर है या नीचे के। अब यहाँ पे देखिए, हमारे किसान भाई जब ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं उसका जो स्प्रे है वो पेंट्रेट करता है, उसके बरक्स जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, नैपसैक स्प्रे है जो बैक में है, अक्सर ये होता है कि ऊपरी सतह में तो कंट्रोल होता है,
1: नीचे नहीं
0: कंट्रोल होता है। उसके साथ जो मेन है कि इसमें पौधे में बीमारी है तो चलिए आपने स्प्रे किया, लेकिन जो उसके आसपास मेड है या उसके आसपास गैप है, उसमें से अगर स्पोर चले गए और या उसमें से कोई पेस्ट आ गया, उसको पहचान लेना, उसके लिए हमको मॉनिटरिंग करना है।
1: जी डॉक्टर साहब, फिर रोकूंगा आपको, एक फोन आ गया है। हेलो
4: हेलो, नरेश भाई नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
4: ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर धनकोर जिला गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से।
1: बहुत बहुत स्वागत है ऋषिपाल जी, क्या हाल चाल है?
4: मैं ठीक है जी, आप सुनाओ, बच्चे परिवार सब ठीक है?
1: सब बढ़िया है, आप बताएं सवाल क्या है?
4: मैं ठीक है नरेश भाई, एक हमने जो है इसका पौधा लगा रखा है सर, अब उसमें वैसे गन्ने तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कंसुआ ज्यादा निकल रहे हैं।
1: अच्छा, कितना लगा रखे? कितना लगाया है?
4: है 10-12, ज्यादा नहीं है, 10-12 मीटर है, घर में ही लगा।
1: अच्छा, घर में ही लगा रखे आपने
3: गन्ने
4: तो उसमें जो है कंसुआ ज्यादा निकल रहे हैं, कैसे
3: गल्ले ज्यादा निकल रहे हैं?
4: हाँ, उसमें से गन्ने में गांठ नहीं होती है सर?
3: हाँ हाँ हाँ, पूरे
4: जो गांठ होती है, गांठ में से फूट फूट के निकल रहे हैं ज्यादा।
3: जमीन के पास वाली जमीन में से निकल रहे हैं या ऊपर की आंखें फुटाव कर गई है?
4: ऊपर निकल रहे सर, ऊपर की बढ़ोतरी कम होगी, जो बेचते हैं अगोला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, अगोला तो बोलते हैं जैसे ऊपर
3: जी,
4: तो वो कम हो गए हैं, छोटे ज्यादा चल लिए नीचे से।
3: उसमें देखो ऊपर कहीं उसमें कोई सुंडी तो नहीं है,
4: क्योंकि जब शायद कीड़ा का प्रकोप भी होता
3: है टॉप बोरर के लग जाने से, जब टॉप बोरर का अटैक होता है तो मेन गोब वहां पर प्रभावित हो जाती है, तो उसके बराबर वाली आंखें फुटाव करके चलना शुरू कर देती है।
4: जी जी, वही है सर। हाँ, वही है तो जो आप बता रहे हो।
3: टॉप बोरर अगोला बेधक जब लगता है तो वो इस कारण से क्या होगा कि उसमें साइड वाली आंखें फुटाव होगी, तो ये घर पे खाने के लिए इस्तेमाल करना है या किसी और पर्पज से है?
4: ना जी ना, खाने के लिए, बच्चे के लिए, घर पे
3: बच्चन के लिए। फिर तो आपको वहाँ पे लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप लगा देते, उन्हीं से कंट्रोल हो जाता। दो ट्रैप, लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप लगा दो अपने घर पर, टॉप बोरर का विशेष एक ल्यूर आता है वो लगा दो, तो आगे भविष्य

0: हमें, क्योंकि अब तो आपके खाने का समय आ चुका, पांचवी पीढ़ी है, तब भी प्रयास करो उसमें एक, क्योंकि नीम ऑयल का आप इस्तेमाल करें जब तितली आए उस समय, और लाइट ट्रैप दो तीन बल्ब लगा दो आसपास, और बल्ब के नीचे एक किसी बर्तन में थोड़ी सा दवाई, या तो क्लोरो या प्रोपेनोफोसाइपर, कोई थोड़े से उस बर्तन में बल्ब के नीचे रख दो और उसमें पानी भर दो, ताकि जो बल्ब के पास वो कीड़ा आए और वो नीचे उसमें गिरे, और गिरने के बाद वहां पर समाप्त हो जाए, आपकी फसल सुरक्षित रहेगी फिर उससे। इसको लाइट ट्रैप का मॉडल बना।
1: ऋषपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगला फोन लेते हैं जी। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं?
2: अलीगढ़ यूपी से हरिओम जी बोल रहा था
1: जी। हरिओम जी बताएं क्या सवाल है।
2: सर जी हमारा सवाल ये है कि हमारे पास जो तीन आम के पेड़ हैं,
1: आम के
2: जी
1: जी,
2: वो लगभग 12 फीट के लगभग ऊंचाई है उनकी।
1: अच्छा,
2: उनमें 4-6 महीने से उसके जो नई कोंपन निकलती है, उसके कल्ले निकलते हैं उसके, उनको पता नहीं कोई कीड़ा या क्या, वो छोटे कच्चे निकलने पर ही वो खत्म कर देता, उनको उनकी बढ़वा नहीं हो रही।
0: ये तो दोनों चीजें इस टाइप की है, क्योंकि थोड़ा सा डायग्नोस करके देखने वाली है, मैंगो मॉल फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है कहीं पे, वहाँ पे बंच बन जा रहा हो, छोटी छोटी कोंपलें फुटाव करती रहती है, क्योंकि वैसे तो बेसिकली ये डिफरेंट चीज़ें हैं। दूसरा, उसको कीट काटने के कारण भी ऐसा होता है कि आपने वहाँ पे निकली और फूटा उसमें आ गया।
2: हाँ जी, वो काट के डाल देते हैं जमीन पर, गिर जाते हैं पत्ते।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो सकता है किसी इंसेक्ट का, कीड़े का प्रभाव वहाँ पर रहा हो, जिस कारण से वो काट के नीचे डलता रहता हो उस पर। यदि ऐसा प्रभाव नज़र आ रहा है तो आप उसमें क्लोरो प्लस साइपर आता है या क्लोरोपाइरिफास, ये कीड़े की दवाई है, आप इसका इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं।
1: हरिओम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर परे,
3: हाँ नहीं, उससे पहले हरिओम जी अगर सुन रहे तो उनको क्या, एक पूसा का प्रोग्राम चलता है वीकली, पूसा व्हाट्सएप सलाह, उसमें आप अपना फोटो भेज सकते हैं, जो भी समस्या है आपको नेक्स्ट वीक में उसका समाधान मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो जो हम AI की बात कर रहे थे कि जो समस्या है, जैसे आपने आपने पौध को तो देखा कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन अब इतनी एरिया को मॉनिटर करना है, रोज किसान को जाना
1: जी,
3: और
1: जी।
3: ना कि पौध को ही नहीं, आज जैसे हमारे साथी ने बताया कि मेड़ को भी देखना है, उसके बीच में गैप है उसको भी देखना है, तो किसान सोच रहे कहाँ कहाँ देखूं, तो यहीं पे उसका जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज है। एक ड्रोन को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2.5 हेक्टेयर 1 घंटे में सर्वे हो जाएगा। अब हमारा किसान भाई पूरा दिन भी चलेगा तब भी कुछ एकर करना भी मुश्किल है। तो ये इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, लेकिन ये तब है जब हमारे किसान भाई इसको सही वे में इस्तेमाल करें। जैसे हम जैसे ड्रोन की बात करें, अब हमारा हर कोई किसान सोचेगा मुझे ड्रोन खरीदना चाहिए, तो उसका इकोनॉमिक सही नहीं बैठेगा।
1: जी,
3: क्यों
1: जी,
3: नहीं बैठेगा? ड्रोन है 8 लाख का, किसान भाई इस्तेमाल करेगा 50 घंटे 100 घंटे। अब 8 लाख रुपए आपने घर में बंद कर दिए एक साल के लिए 50 घंटे के लिए। हाँ, यही हमारा युवा ये ड्रोन खरीदेगा और हर एक किसान की खेत पे दे देगा तो इकोनॉमिक सही है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है जो हमको समझना पड़ेगा, इस टेक्नोलॉजी से AI से सोशल चेंज आई है। आज आप देख रहे हैं, आज जो टेक्नोलॉजी है वो स्किल न्यूट्रल हो गई, मतलब पहले क्या होता था, लेटेस्ट सपोज आप मान लीजिए ट्रैक्टर है, अब उसमें जो मेल ड्राइवर्स होते हैं वो ज्यादा चला पाते थे क्योंकि फीमेल को सूट नहीं करता था उसके जो कंट्रोल सिस्टम, लेकिन वही ड्रोन का आप रिमोट कंट्रोल दे दीजिए महिला के हाथ में,
1: वो चलाएगी आराम से,
3: वो चलाएगी। तो उसने टेक्नोलॉजी को स्किल न्यूट्रल कर दिया कि कोई भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब आप पे आते हैं। मलिक साहब आप बताए
0: जी जी जी,
1: और मोटा मोटी बताओ जी, किसान को क्या लाभ है? सीधी बात है, हम क्योंकि किसान नहीं, के फायदे की बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: AI से किसान को क्या लाभ होने वाला,
0: क्या लाभ है वास्तव में किसान को? यदि हम अपने गन्ने के केस में, क्योंकि मैं गन्ने पे ही फोकस करूंगा, जनरल नहीं, गन्ने के केस में यदि हम AI मॉडल किसान के लिए लेके आते हैं, किसान उसको एडॉप्ट करता है, तो उसको प्रिडिक्शन पहले से ही पता लग जाएगा कि उसके खेत में किस प्रकार के कीट का प्रकोप होने वाला है, या प्रारंभ हुआ है तो कितने छोटे से क्षेत्र में। जैसे आज हम स्प्रे करते हैं, हमारे किसान को नहीं पता है कि मेरे खेत में कौन सा कीट और कितने क्षेत्र में है, वो पूरे 1 एकड़ पर स्प्रे करता है।
1: जी जी,
0: AI में हम उस पर्टिकुलर 10 मीटर स्क्वायर में या 5 मीटर स्क्वायर में यहां पर कीट का इंटेंसिटी वहां पर बढ़ी है, वहीं पर ही हम उसको स्प्रे करके वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पेस्टिसाइड का यूज है वो मिनिमम लेवल पर जा सकता है। दूसरा, आप उसमें यदि मैं बात करूं, जब हम AI पे गन्ने में चलते हैं तो ड्रिप मस्ट है,

0: तो उसके लिए वाटर सेविंग लगभग 40% तक आप वाटर सेविंग प्लस न्यूट्रिएंट सेविंग, पोषक तत्व तो उतनी ही मात्रा में हमको पौधे के रूट जोन में देने
1: रूट
0: हैं,
1: जोन में देने हैं
0: जहां पर उसको नीड है
1: जी।
0: हमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना है, हमें उसको उसी जोन में पानी देना है, उसी जोन में हमें न्यूट्रिएंट देना है, और उसी में हम 30% वाटर सेविंग कर रहे हैं, 30% हम उसमें न्यूट्रिएंट की सेविंग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबसे मेन है कि यदि हम उसके प्रेडिक्शन कर लेंगे पहले ही, हम सारे न्यूट्रिएंट अप्लाई करके पहले से हमें पता होगा, इंडस्ट्री तक को पता होगा कि आपका इस इतने ज्योग्राफिकल एरिया में आपको इतनी प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है, ये सारी चीजें हमारे किसान को भी पता होगी और इंडस्ट्री को भी पता होगी। हमारे किसान को भी पता होगा कि मेरी ये फसल इस समय मैच्योर हो गई है, और क्योंकि वो मैच्योरिटी के पैरामीटर हम उसके साथ कोरिलेट करेंगे, और इंडस्ट्री को भी पता होगा कि इस वैरायटी की हम हार्वेस्टिंग इस समय करते हैं तो हमें इतनी ब्रिक्स मिलेगी, इतनी उसमें रिकवरी उसको प्राप्त होगी। तो उसी के बेस पे हम एआई का मॉडल किसान के लिए, वो सेविंग का मॉडल है उसके लिए, जो आपका पेस्टिसाइड है उसकी सेविंग होगी, वाटर की सेविंग होगी, न्यूट्रेंट की सेविंग होगी, और 2-4% नहीं, आपकी 30-35% तक सेविंग होगी, प्लस 30-40% तक प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है।
1: अभी इंद्रवीर भाई का फोन आया था कि भाई कोशिश कर रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो, तो ऐसे होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट, क्योंकि लागत कम हो रही है।
1: जी जी
0: भाई, मुझे जिस क्षेत्र में उसको यूज करना है केवल उतने छोटे हिस्से में, जो हम एआई का मॉडल लगाते हैं तो हमारे सेंसर है जमीन में भी, हम प्लांट के पास में सेंसर लगा रहे हैं, कितने न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट है, हम उतना ही न्यूट्रेंट उसको सप्लाई में दे रहे हैं। हम सोयल का डाटा पहले हम अपना जनरेट करते हैं, ताकि उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं कि इतनी प्लांट को रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे ही हम उसको अप्लाई वहां पे करा रहे हैं
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें हमारे पास है मॉनिटरिंग करने के लिए। मॉनिटरिंग आप जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया ड्रोन का,
1: ड्रोन
0: हमारा केवल किसान की भाषा में अभी केवल स्प्रे के लिए है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में जब हम इसमें बात करते हैं एआई में, वो वहां पर सर्विलेंस के लिए है, वो जानकारी के लिए भी है, कहीं डिजीज का या इंसेक्ट का या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का इंप्रेशन तो नहीं आ रहा है, स्ट्रेस का इंप्रेशन तो नहीं आ रहा है, वो सारा डाटा बेस हम उसके बेस पे हम उसको एनालिसिस करते हैं कि भाई ये चीजें इस फील्ड में आ रही, और इसको कोरिलेट करके हम फार्मर्स को फिर उसी के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं कि आपको ये चीज इस अंतराल पे इतनी वाटर सेविंग के साथ में आपको उसमें जाना है। तो
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे आपने सिंचाई की बात करी, आपने कहा कि ड्रिप लगाएंगे, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जैसे ही आपका एआई बताएगा कि भाई पानी की जरूरत पड़ी है
0: जी जी,
1: तो पानी आपने दे दिया पानी, क्योंकि जितनी जरूरत है उतना
0: उतना
1: है,
0: दिया जाएगा,
1: तो वो पानी की भी बचत हो जाएगी
0: जी,
1: बिजली की बचत भी हो जाएगी
0: बिल्कुल,
1: और उसके साथ साथ ड्रिप के साथ हम शायद अपना न्यूट्रिएंट्स हैं जो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जो पोषक तत्व
0: वो
1: भी उसी के द्वारा
0: अकॉर्डिंग जाएंगे,
1: तो वो बिल्कुल जड़ में जहां जरूरत है
0: वहीं वहीं पर जाएंगे।
1: तो जो बाकी जो खाली जमीन है छिड़काव पे, तो सब जगह गिरेगी,
0: ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो सब जगह जाती है, बिल्कुल
1: सेम हो जाएगा
0: दवाओं का
1: ना। तो कुल मिला के जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर मलिक के, बहुत सा पैसा हम बचा सकते हैं, जरूरत इस बात की है कि हम इस चीज को खुले दिल से एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें,
0: भविष्य है
1: जी जी जी
0: बिल्कुल।
1: ये अब डॉक्टर साहब उत्पादन तो आपने बताया है कि लगभग कितना,
0: 30-40%
1: 30-40%
0: उत्पादन को इस तरीके से भी कोरिलेट करो कि उत्पादन 30-40% बढ़ेगा, लागत 30-40% कम होगी, जो आप दे रहे हैं उससे लागत में भी कमी आएगी और उत्पादन में वृद्धि होगी,
1: यानी आपका खर्चा कम हो जाएगा और इनकम जो है वो
0: बढ़ जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, जो अब कुल मिला के जो हमारे युवा किसान है खासतौर पर
0: जी,
1: क्योंकि हमारे पास अब लगभग एक मिनट है, एक
0: अच्छा,
1: मिनट
0: अच्छा।
1: में उनको ये बता दो कि भाई आने वाला समय एआई का है,
0: नो डाउट,
1: क्यों है?
0: इसके लिए मैं गन्ने के केस में विशेष रूप से बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, जो हमारे युवा है, क्योंकि हम हर चीज को जब तक डाटा बेस जनरेट करके, हम एनालिसिस करके, जो आज का समय है, हम साइंटिफिक लेवल पर जब हम किसान को बताते हैं वो केवल एनालिसिस करके बताते हैं। जब भी मैं शुरू की बात से यहाँ को रिलेट करना चाहूंगा, किसान केवल एक चीज देखता है, कलर
1: जी,
0: किसान केवल उसकी हाइट और कलर दो चीज को मेजर करता है, एआई आपकी सब चीज को मेजर करेगा, हाइट को भी, कलर को भी, वेट को भी, उसका कोरिलेशन वेदर से भी निकालेगा, उसका कोरिलेशन आपके वहां पर सोयल स्ट्रक्चर से भी निकालेगा, जो एक्यूरेसी के साथ में किसानों के लिए और हमारे पूरी इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और वो एक बहुत बड़ा उनके लिए बेनिफिशियल पॉइंट बनने वाला है।
1: डॉक्टर मलिक, डॉक्टर परे, बहुत मजा आ रहा था, लेकिन समय की पाबंदी है डॉक्टर साहब, अब समय है।

0: हम किसानों से विदा लें। तो इसी के साथ हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद जय,
0: धन्यवाद सर,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: जय।
2: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
3: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
4: आज के विशेष फोन इन कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत गन्ना फसल में AI का प्रयोग। आज के हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर विकास कुमार मलिक, वैज्ञानिक एवं प्रभारी गन्ना उत्कृष्टता केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत उत्तर प्रदेश से। और जो दुमारे दूसरे जो विशेषज्ञ थे डॉक्टर रऊफ अहमद परे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक थे कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली से, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश पारा सर। तो इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सुनने वाले किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारा सर और कार्यक्रम संयोजक थे शिवनंदन लाल।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:35 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कव्वाली। कव्वाली के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। गजल और कव्वाली में आज आप सुनेंगे सबसे पहले जगजीत सिंह की आवाज़ में गजल।

यूं ही मोहब्बत में जा रहे थे हम चलते हुए, रास्ते में तुम मिल गए और मुलाकात हो गई। लोगों ने जाने क्या कर दिया कि अब मुलाकात के लिए भी तरसते हैं। दिल यूं ही बेकरार है, बेकरारी जीवन में छाई है। और ऐसे ही कई लाइन, कई ऐसे गज़लें और कई ऐसे लफ्ज़ को कई लोगों ने बहुत खूबसूरती से पिरोया है। उन्हीं में से एक गज़ल चंदन दास के आवाज़ में

0: गज़लों का कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह की। दिल्ली कैबिनेट बैठक में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 250 बेड के सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में दिल्ली शीर्ष पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार कल सेवा समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 250 बेड के सुपर स्पेशलिटी कम ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना की लागत 244 करोड़ 87 लाख रुपए होगी।
1: नया ब्लॉक जीटीपी अस्पताल के मौजूदा परिसर में ही बनाया जाएगा। 7 मंजिला इमारत में 77 क्रिटिकल केयर बेड, 9 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और 38 ओपीडी कमरे होंगे। ब्लॉक में 24 घंटे आपातकालीन सेवा के साथ सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और प्रयोगशाला जैसी जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के चौथे चरण के तहत किया जाएगा और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नए ब्लॉक के शुरू होने से गंभीर मरीजों को 24 घंटे सातों दिन इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा, जांच, सर्जरी और गहन चिकित्सा की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी दिल्ली में गंभीर दुर्घटनाओं और आपातकालीन मामलों के इलाज की क्षमता बढ़ेगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया। इसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई मोबिलिटी के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के बाद अन्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। ये सूचकांक का दूसरा संस्करण है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति का आकलन करता है। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 प्रमुख विषयों परिवहन विद्युतीकरण प्रगति, चार्जिंग अवसंरचना की तैयारी और इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान तथा नवाचार स्थिति के अनुसार 16 संकेतकों पर सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 100 अंकों में मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य निर्णय लेने में सहायता करना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को और उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करने को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है। ऐसा अनुमान है कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री में 40% हिस्सा इलेक्ट्रिक कार का होगा। की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार कल सेवा समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार 1 माह तक सेवा संकल्प अभियान भी चलाएगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।
4: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कर्तव्य पथ पर शाम 7 बजे आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की सेवा में निरंतर शक्ति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान भी किया।
5: हम सब मिलकर के अपने घर पे, अपने आंगन में एक आशीर्वाद का दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जलाएं शाम को 6 से 7 के बीच 17 सितंबर को। मैं भी जलाऊंगी, आप भी जलाइए आशीर्वाद का दिया।
4: वहीं त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेगा रक्तदान शिविर होगा, जिसमें 2500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अलीपुर स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम में 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन होगा और दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमता

0: युवाओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में मानवाधिकारों की रक्षा और शांति को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला में मानवाधिकारों की रक्षा, संसदीय निगरानी और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान में विधायिकाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली को देश की सोलर कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर आयोजित सोलर वेंडर्स मीट में विक्रेता और हितधारकों से सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार अगले कुछ महीनों में करीब 2,30,000 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन को सुगम बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए अगले 6 महीनों में करीब 2,600 से 2,700 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के कौशल भवन में वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए विदाई समारोह आयोजित किया। इस दल में कुल 70 कुशल युवा प्रतिभागी शामिल हैं, जो इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल बनाता है। ये दल चीन के शंघाई में 22 से 27 सितम्बर तक होने वाली 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में 63 कौशल श्रेणियों में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। ये प्रतियोगी विश्व मंच पर पहली बार 11 नए और उभरते कौशल क्षेत्रों में हिस्सा लेगा, जिनमें ड्रोन तकनीक, विमान रखरखाव, सॉफ्टवेयर परीक्षण और दंत कृत्रिम अंग शामिल हैं। विदाई समारोह में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। दिल्ली यातायात पुलिस की उत्तरी रेंज ने यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 2,511 चालान जारी किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने इस अभियान के अंतर्गत गलत तरीके से वाहन खड़ा करने पर 2,041, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 383 और वाहनों में रंगीन शीशों के इस्तेमाल पर 87 चालान जारी किए। अभियान का उद्देश्य यातायात अनुशासन बनाए रखना, मार्गों पर अवरोध रोकना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज दिल्ली की स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने जोनवार और वार्डवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कचरा संवेदनशील स्थानों की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरा पृथककरण और दिल्ली को बिन मुक्त बनाने पर बल दिया। आयुक्त ने पारंपरिक सामुदायिक कूड़ेदानों पर निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम कर मौजूदा स्तर के अधिकतम 20% तक लाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। आज सभी 12 जोन में 46 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, 11 संपत्तियां सील की गई और 12 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जल मंथन 2026 आज समाप्त हो गया। इस महामंथन में इसराइल, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस के बड़े तकनीकी जानकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: आज विश्व ओजोन दिवस है। ये दिन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय ठंडे गृह के लिए वैश्विक कार्रवाई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान

0: किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आज वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें संस्करण के लिए फिनिशर मेडल का अनावरण किया। इस मैराथन का आयोजन रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगा। दिल्ली के श्रम, रोजगार और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये मैराथन दिल्ली के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है जो देश और दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाता है।
1: आप सबसे अपील है, आप सबका आह्वान है कि 18 अक्टूबर को होने वाले दिल्ली हाफ मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और आइए दिल्ली को एक टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दोबारा से तैयार करने के संकल्प को पूरा करें।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह की। दिल्ली कैबिनेट बैठक में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 250 बेड के सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में दिल्ली शीर्ष पर। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व ओजोन दिवस पर ओजोन परत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: रात्रि के 8 बज चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत मालिका में। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। और जो कि ये ऐसा माला है, यानी गीतों का माला, कुछ इस तरीके से पिरोया गया है जो आप आनंद ले सकेंगे, जिसमें 80s के उन गीतों का, जो गीत हर वक्त हम सुनना चाहते हैं और लगभग कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई गीत सुनने को मिल जाए, उन्हीं गीतों को लेकर आज मैं हाजिर हूँ पूजा भारती। और शुरुआत करते हैं सबसे पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

इस खूबसूरत गीत के साथ अगर हम ये कहें कि ऐ मेरे हम सफ़र, साथ चल तू मेरे इस सफ़र में, कोई गम ना रहेगा फिर जिंदगी की डगर में, तू जो हाथ थाम ले हाथ मेरा, तो यकीन आ जाएगा फूल खिल जाएंगे कांटों भरे इस शहर में। वाकई में अपने हम सफ़र से यही तो ख्वाहिश होती है।

इसी इंतजार के साथ काश वो पल आ जाए जब तुम और मैं एक साथ बैठे हों और वक्त वहीं थम जाए। ये सर्द हवाएं जब तुम्हें छूकर गुजरे तो मेरा नाम लेकर बह जाए। ना फासले हो ना कोई मजबूरी दरमिया, बस तुम और मैं हूँ और प्यार का जहाँ हो। जी हाँ, प्यार करने वालों ऐसे ही सोचा करते हैं और गीतों में कुछ इसी तरीके से प्यार करने वालों के लिए ढाला गया खूबसूरत आवाज़ में। जी हाँ, आवाज़ किसकी है? लता मंगेशकर और SP वाला सुब्रमण्यम। आइए सुनते हैं इस गीत को।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ, और गीत मालिका में आपके पसंद के ही तो गीत हैं। जी हाँ, ये वो गीत हैं जो हर वक्त हम सुनना चाहते हैं और कोशिश करते हैं हमारे कानों में इन गीतों की एक शब्द जरूर पड़ जाए, क्योंकि गुनगुनाने में ये गाने ये गीत बहुत ही आनंद देते हैं। फिलहाल तो आगे चलते हैं अगले गीत की ओर। कहते हैं ना कि उठा कर पलके वो दिल का सुकून छीन लेते हैं और झुका कर नजरें वो धड़कनों को उलझा देते हैं। लोग ढूंढते हैं तहजीब।

कहते हैं कि जिंदगी में आप चाहे कहीं भी चल जाए, लेकिन एक रास्ता ऐसा होता है जहाँ लगता है कि जाना तो वही है। कहते हैं ना कि नक्शे बदलते देखे हैं मैंने जमाने के, पर मेरा हर रास्ता तुझ पर ही ठहरता है। लोग ढूंढते हैं खुदा को आसमानों में, मेरा तो हर सजदा तेरी गली से ही गुजरता है।

दुनिया सिमट जाती है अगर दो मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं। कहते हैं ना कि हवाएं रुख बदल ले, मौसम को एक नया बहाना मिल जाए। अगर तुम मेरे हो जाओ तो इस अधूरे जहां में आसमां मिल जाए। जी हाँ, मोहब्बत करने वालों की सोच कुछ इसी तरीके से होती है। तो क्यों ना एक और गीत सुना जाए जिसमें मोहब्बत करने वाले क्या बयां कर रहे हैं।

और प्यार करने वाले कुछ इस तरीके से ही तो सोचते हैं कि तुमसे मिलकर कुछ ऐसा खास लगा कि दूर होकर भी तुम मेरे आसपास लगा। बाकी सब तो बस दुनिया का एक हिस्सा थे, सिर्फ तुमको मिलकर ही मुझे खुद का एहसास लगा।

वाकई में जिंदगी में और क्या है, जिंदगी खूबसूरत तभी है जब आपके जीवन में मोहब्बत है। और मोहब्बत कहते हैं कि हर घड़ी को खूबसूरत बना देती है, हर पल खूबसूरत हो जाता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में मोहब्बत का ही साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो फिर एक आखिरी नगमा मोहब्बत पर आपके लिए।

0: इसी के साथ कार्यक्रम गीत मालिका यहीं पर संपन्न होता है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को है। अब सुनिए समाचार संध्या हिंदी में। समाचार
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51,00,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51,00,000 एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिलेगा।

0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
1: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3,00,000 रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
3: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
1: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
2: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और

0: इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district. And veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. The Prime Minister called for greater industry participation in skilling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence and quantum computing. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi said India should aspire to be among the early leaders in emerging technologies. He noted the significant progress made in the semiconductor sector and said the ecosystem is now moving from foundational efforts to a phase of greater scale and opportunity. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. He invited industry leaders to share suggestions on policy and administrative measures and assure them that their inputs would be given due consideration in further strengthening the sector. He encouraged industry leaders to actively participate in the next phase of India's semiconductor growth. The CEOs appreciated the government's sustained efforts to develop India's semiconductor capabilities, noting that progress made in manufacturing, design, infrastructure and talent development. They expressed confidence in the opportunities emerging under India Semiconductor Mission 2.0 and in India's potential to build capabilities across the semiconductor value chain, including manufacturing, research and development, advanced technologies and supporting industries. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The meeting was attended by CEOs, heads and representatives of various organizations, including SEMI, Micron, Infineon, Tokyo Electron Limited, Fujifilm, Intel, Tata Electronics, Foxconn, Semiconductor Devices, Advantest, IBM Research.

0: express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month, 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district, and veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. That is all in the news at night. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनातों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने ईपीएफओ के तहत कम से कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक कानून यूएपीए के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने बस्तर जिले के साल 2013 झीराम वादी माओनवाज हमले में कसूरवार करार दिए गए 10 मुलजमीन को सजाए मौत सुनाई है। और आजमुदाकार कन्नड़ अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहिब फाल्के नाम से नवाजा जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत का टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए हुकूमत और सेमीकंडक्टर सनत के दरमियान करीबी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में सरकर्दा सीईओज के साथ सेमीकंडक्टर गोलमेज की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने महारत, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे को अपनाने की भारत की मजबूत बुनियाद को नुमाया किया और मसनूई जहानत एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की महारत और जिद्दत तराजी में सनअतों की बड़े पैमाने पर शमूलियत की अपील की। एआई के शोबे में 1 करोड़ अफराद को तरबियत देने के हदफ का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत के होनहार अफराद और आलमी सनती रहनुमाओं की सलाहियतों और तजुर्बों को यकजा करने से खातिरख्वाह इम्कानात पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मामले में कायद बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। उन्होंने वाज़े किया कि सेमीकंडक्टर के शोबे में खातिरख्वाह पेशरफ भी हुई है और कहा कि ये इको निज़ाम बुनियादी कोशिशों से आगे बढ़कर बड़े पैमाने और ज्यादा मौकों के मरहले की जानिब गामसन है। इस दौरान सीईओज ने भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को फरोग देने में हुकूमत की पायदार कोशिशों की सताइश की। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और पूरे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में सलाहियत साजी की भारत की अहलियत के तहत उभरते हुए इम्कानात पर एतमाद का इजहार किया, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक और तरक्की, एडवांस टेक्नोलॉजीज और माविन सनअतें शामिल हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से कल नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले सेमीकॉन इंडिया के 5वें एडिशन के इफ्तिताह से पहले ये गोलमेज मीटिंग हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम से वाबस्ता शराकतदारों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी ताकि मावनत और इख्तरा को फ़रोग हासिल हो, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा हो, सरमायाकारी को रागिब किया जा सके और मुस्तकबिल के लिए तैयार सलाहियत पैदा की जा सके। इस तकरीब में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक़वामी कंपनियां और 50 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस नुमाइश में जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और सूडान की नुमाइंदगी कर रहे 6 पवेलियन, 12 रियासती सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप से मुतालिक मखसूस पवेलियन शामिल होंगे। सेमीकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से मुतालिक भारत की मुमताज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सेमी मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं।

0: मरकजी काबीना ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के तहत लाजमी कवरेज के लिए तनख्वाह की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना कर दिया है। आज काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से 51 लाख इजाफी मुलाजमीन के लाजमी ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है, जिससे कारकुनों के लिए समाजी तहफ्फुज का दायरा नुमाया तौर पर वसी होगा। इस इकदाम के लिए हुकूमत के सालाना अखराजात का तखमीना तकरीबन 11,349 करोड़ रुपए है। जनाब वैष्णव ने कहा कि नजरसानी शुदा तनख्वाह की हद कल विश्वकर्मा जयंती से नाफिजुल अमल हो जाएगी।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 तक ईपीएफओ की तनख्वाह की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था। जनाब वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मौजूदा फैसला इस हद को 25,000 रुपए तक बढ़ाकर इस नुक्ता नज़र को मजीद बढ़ाता है, जो कि इन बरसों के दौरान उजरत में पायदार बढ़ोतरी, इजाफी आमदनी और बाजाबता रोजगार में तौसी की अक्कासी करता है। हमारे नामानिगार के रिपोर्ट के मुताबिक इस मंजूरी से प्रोविडेंट फंड की बचत तक रसाई में इजाफा होगा और मुलाजिमीन की पेंशन स्कीम के तहत पेंशन तहफ्फुज को वसत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तनख्वाह की हद में इजाफा एक जामे मुस्तहकम और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग समाजी तहफ्फुज के निज़ाम की तामीर की जानिब एक और अहम कदम है। इस वक्त अगर कोई नया मुलाजिम 15,000 रुपए माहाना से ज्यादा तनख्वाह पर मुलाजमत इख्तियार करता है तो वो खुद ब खुद ईपीएफ के दायरे कार में शामिल नहीं होता था। इस हद को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से मुलाजमीन का एक बड़ा हिस्सा कानूनी समाजी तहफ्फुज के निज़ाम में शामिल हो जाएगा। नजरसानी शुदा तनख्वाह की हद मुलाजमीन को इदारों में बरकरार रखने, बाजाबता इफरादी क़ुव्वत को ज्यादा मुस्तहकम बनाने, पायदार रोजगार को फरोग देने और पैदावारियत में इजाफा करने में मुआविन साबित होगी। इस मंजूरी के नतीजे में मुलाजमीन को प्रोविडेंट फंड की बचतों तक रसाई, मुलाजमीन की पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का तहफ्फुज और मुलाजमीन डिपॉजिट से मुंसलिक बीमा स्कीम के तहत बीमा तहफ्फुज भी हासिल होगा। आकाशवाणी से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: सेवा संकल्प अभियान कल से मुल्क भर में शुरू होगा। अभियान की शुरुआत से पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में अखबारी कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत की तारीफ की और उन्हें अवामी बहबूद को सही मायनों में तरजीह देने वाला रहनुमा करार दिया।
3: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी ने अवामी खिदमत के अपने 25 साल में भारत के हर शोबे की काया पलट की है। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने जल शक्ति के वजीर मुमलिकत वी सोमन्ना और मकानात और शहरी उमूर के वजीर मुमलिकत तोखान साहू के हमरा आज स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2026 का आगाज किया। इस मुहिम का मौजू है स्वच्छता सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। आज शाम तारूफी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से खिताब करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि इस साल की मुहिम 5 अहम सुतूनों पर मरकूज है। इनमें अवामी मकामात की सफाई सुथराई, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि के मकासद शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। ये दहशतगर्द ग्रुप हथियारों, धमाका खेज मवाद और मनुष्यात की सरहद पार स्मगलिंग में मुलव्वस रहा है। इसके अलावा ये नौजवानों को भड़काने और मुजरिमीन को दहशतगर्दी के जाने मायल करने में भी शामिल रहा है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस मामले में आज गजट नोटिफिकेशन जारी किया। शहजाद भट्टी नेटवर्क ने भारत के जमहूरी ढांचे और फिरकावाराना हम आहंगी के ताने बाने को निशाना बनाते हुए नफरत अंगेज डिजिटल मवाद भी शाया किया। वजारत दाखिला ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दहशत

सर्दी को हरगिज बर्दाश्त ना करने के नजरिए के तहत उसने यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नज़दीक ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस हमले के ताल्लुक से मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब हुकूमत की इलाकाई सालमियत और आम शहरियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का के नज़दीक ये वाकया खास तौर पर तशवीश का बायस है क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की उम्मीद करता है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का के नजदीक ईरान की पुष्तपनाही वाले यमन के हूसी मुसल्ला ग्रुप के जरिए किए गए ड्रोन हमलों के दौरान एक ड्रोन को नाकाम बना दिया और उसे तबाह कर दिया। यमन में कानूनी हैसियत की हिमायत करने वाली इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने खबरदार किया है कि सऊदी क्यादत में इत्तेहाद मजीद हमलों के खिलाफ जरूरी इकदाम करेगा। इस दौरान हूसियों ने मक्का को निशाना बनाए जाने से इनकार किया है। सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान तेजी से कशीदगी में इजाफा होने के दरमियान ये वाकया पेश आया है। कल सऊदी अरब की सिविल डिफेंस ने कई अलर्ट्स जारी किए थे। अलबत्ता उसने बहरे अहमर में अपने अहम ऑयल पोर्ट यांबू समेत 6 शहरों में इन अलर्ट्स को हटा भी लिया था। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने थिम्पू में अपने भूटानी हमनसब लियोनोपो डीएन ढुनग्याल से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर तावुन का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत में तरक्याती शराकत दारी तवानाई तिजारत राबता सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबित समेत भारत और भूटान के कसीर जहती ताल्लुकात को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने झीरामवादी के सभी 10 कसूरवारों को आज सजाए मौत सुनाई है। खसूसी जज अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया। कसूरवारों को फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा पुलिस स्टेशन के तहत झीरामवादी में हुए माओनवाज हमले में कई सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मामले में कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 11 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया था। एक मुलजिम की समाअत के दौरान मौत हो गई। एनआईए की खसूसी अदालत ने 5 सितंबर को बाकी 10 मुलजमीन को इस मामले में कसूरवार करार दिया और आज सभी 10 मुलजमीन को सजाए मौत सुनाई गई। भारत सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेशन के मरकजी बोर्ड CBFC की फौरी तौर पर असर नौ तश्कील की है जिसकी मुद्दत 3 साल होगी। इत्तला नशरियात की वजारत ने कहा कि 9 तश्कील शुदा बोर्ड CBFC में 18 मेम्बरान होंगे। मस्कूरा बोर्ड CBFC की असर नौ तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन इत्तला नशरियात की वजारत की जानिब से आज जारी किया गया। मशहूर अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहिब फाल्के इनाम से नवाजा जाएगा। कई नस्लों को तहरीक देने वाले सिनेमा के उनके सफर और भारतीय सिनेमा में गरा कदर तावुन के बदले जनाब नाग को इस इनाम से नवाजा जाएगा। जनाब नाग को इस महीने की 22 तारीख को गुजरात के केवड़िया में मुनाकिद होने वाली 72वीं कौमी फिल्म इनामत तकरीब के दौरान दादा साहिब फाल्के इनाम से सरफराज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़मुदाकार अदाकार अनंत नाग को दादा साहिब फाल्के इनाम दिए जाने के ऐलान पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब नाग की बेहतरीन कारकर्दगी हमागीर सलाहियत और उमदगी ने कई दहाइयों तक भारतीय सिनेमा पर अनमिट नक़ोश छोड़े हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि जनाब नाग ने हमेशा अपनी अदाकारी में गहराई का मुजाहिरा किया है और मुनफरिद अंदाज पेश किया है। वजीर आजम ने कहा कि एक मुनफरिद फनकार के तौर पर जनाब नाग इस एजाज के मुस्तहिक हैं। हुकूमत ने 3 लाख रुपए तक के सरमाए वाली बरामदाती खेपों को रजिस्ट्रेशन के मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC या रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना कर दिया है। तिजारत व सनत की वजारत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद नए और छोटे बरामदकारों के तकमीली अमल के बोझ को कम करना और तामीली अमल के बोझ को कम करना और पोस्टल कुरियर और दीगर उभरते हुए चैनल्स के जरिए बरामद के अमल में आसानी पैदा करना है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के मैदान में कायद बनाने के लिए सनअतों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा

सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने ईपीएफओ के तहत कम से कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजिमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून यूएपीए के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और खित्ते में अमनो इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

تمامی دیگر مهلون چین لیا به صداهای لطم میشکر و مکش از فیلم زبک.

जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। मोहम्मद रफ़ी दर फिल्म में बरसात की रात यानी शब फसल बारान मीहानत।

गर्जत बरसत सावन आयो रे, सुमन कल्याणपुर व कमल बारोत दरफिल में बरसात की रात यानी शबे फसल बारान मीखानन।

كذلك نجزي الظالمين.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के

0: देवभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 27% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi. The Prime Minister has called for greater industry participation in skilling innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. The roundtable was held ahead of the inauguration of the 5th edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi today. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। 1:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत। आई श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गोल्डन एरा फिल्म संगीत गीत सुनहरे, मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। गोल्डन एरा की बात हो रही है, तो गोल्डन एरा वही है ना जब जो गीत बने वो आज भी तरोताजा है, वो आज भी हमारे जुबान पर यूं ही बने हुए हैं और यूं ही खूबसूरत और नए नवेले लगते हैं। जी हाँ, वही तो है गोल्डन एरा, क्योंकि वो एरा ऐसा ही तो था जब गीत बनते थे जो आज भी लोगों को पसंद आते हैं, आज भी लोगों को

निभाते हैं और वही गीत आज भी लोगों के चेहरे पर जगमगाहट ले आते हैं। जी हाँ, हर एक पहलू को छूता हुआ उस एरा के गीत हम सभी को भाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ गीत समेटकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का गीतादत्त के स्वर में ये गीत।

गोल्डन एरा की बात हो रही है तो वो गीत जब प्यार मोहब्बत की बातें के साथ साथ दुनिया से दूर कहीं जाने की बात हो रही थी, तब उस शब्दों के साथ एक खूबसूरत गीत बन गया और वो गीत ये था।

पुराने गानों में उनके शब्दों में बात कुछ अलग थी। अब यूं देखिए कि जब आँखों को किसी का इंतज़ार होता है या किसी को देखने की तलब होती है, तो गीतों में उस शब्द को कुछ यूं ढाला गया कि जलते हैं जिसके दिए दोनों आँखों के दिए। इतने खूबसूरत लाइन के साथ वो गीत क्यों हिट ना हो और वो गीत क्यों खूबसूरत ना लगे, तो क्यों ना इस गीत को सुन लिया जाए।

गोल्डन एरा की जब बात होती है तो एक शराफत, एक खूबसूरती और एक सादगी गीतों में भी ढाला जाता था, वो नज़र आता था। लेकिन जब बात होती है उन गीतों की जहाँ वो सादगी और खूबसूरती, वो शब्द, वो सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन एक अलग सी शांति भी नज़र आती है, वो कौन सा गीत है? वैसा गीत जहाँ अपने दिल की बाजी लगा दी जाती है, दिल को यूं ही छोड़ दिया जाता है दुनिया के लिए, मोहब्बत छोड़ दिया जाता है, दिल तोड़ दिया जाता है, लेकिन एक शांति फिर भी बनी है। वो वैसे जो गीत बने, उस तरीके के जो गीत बने, वो गीत लोगों को बहुत भाए, क्योंकि उसमें एक दर्द था, लेकिन गीत बहुत सादगी भरा था। सुनते हैं।

कितना खूबसूरत सा गीत, वही समय हो सकता है जो इन गीतों को दे सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम, मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला गीत रात पर ही तो है। जी हाँ, रात खूबसूरत हो और सुहानी हो तो फिर गीत क्यों ना बने। वैसे भी अगर देखा जाए तो गोल्डन एरा की बात हो रही है, हर एक समय पर, हर एक सिचुएशन पर गीतों को बनाया गया है, तो फिर ये गीत क्यों ना बने और ये गीत हिट क्यों ना हो। आइए सुनते हैं गोल्डन एरा का एक और अलग सा ये गीत।

बात हो रही थी कि सुहानी रात की, तो फिर इस गीत के बाद वो गीत जहाँ एक अलबेली अकेली, एक नार कहाँ जा रही है, गीतों में ऐसा कुछ बताया गया है। वैसे तो गोल्डन एरा की बात हो रही है, उस वक्त के जितने भी गीतकार संगीतकार थे सब के सब माहिर थे अपने कार्य में, अपने कलाकारी में। उस वक्त हिट हुए थे मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त। इस गीत के साथ उनकी जोड़ी अलग ही नज़र आई। जी हाँ, इसके बाद वो गीत इतनी ज़्यादा हिट हुई कि लोगों ने मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त के स्वर को एक साथ सुनने की अपनी इच्छा जताई, क्योंकि गीत के हिट होते ही फिर वो गीत बनकर आए इन दोनों के ही स्वर में अलग अलग तरीके से। तो आइए सुनते हैं उस गीत को जिसने इन दोनों को एक अलग पहचान दी।

आपने ये गौर किया होगा कि जब गोल्डन एरा की बात होती है, सुनहरे गीत की जब बात होती है, वो गीत बिल्कुल कम समय के होते थे, यानी कि बहुत कम ड्यूरेशन के, लेकिन उस उतने ही देर में गीत में हर चीज़ समझा दिया जाता था, यानी कि गीतों की खूबसूरती कम शब्दों के साथ भी बता दी जाती थी। उसमें गीतों में जो एक्सप्रेशंस डाले जाते थे, जो भाव होते थे, वो बहुत भाते थे। अब जैसे ये गीत देखिए, ऐसे ना देखो, शब्द और बोल इस तरीके से बनाए गए हैं कि गीतों को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात और भी है, इन गीतों में जो हम देख पाते हैं वो ये कि धुन बहुत ही मध्यम और धीमी चाल के साथ साथ खूबसूरत तरीके से दिया गया, जो स्वर को ऊंचा दिखाता हो और धुन को उसके लेवल के साथ ढालता हो। धुन जब कानों में जोर ना डाले और शब्द जब कानों पर जोर डाले, तो गीत सुनहरे गीत ही बन जाते हैं।

अगर नैनो को नादान बोला गया, यानी कि नैनो ने कुछ खता की है, और गीत लता मंगेशकर के शब्दों से उनके गले से निकल कर आया, कौन सा गीत है ये, सुनते हैं।

नादान। नैनों को नादान जब बोला जाता है तो ये नादान शब्द अब तो सुनने को ही नहीं मिलता।

0: मैंने कहा था ना कि पुराने गीत जब गोल्डन ईरा की बात होती है, यानी गीत सुनहरे की जब बात होती है, तब उस वक्त कोई भी सिचुएशन, कोई भी समय को छोड़ा नहीं जाता था। हर एक समय पर, हर एक मूड पर गीत बने थे। अब जब हमने पढ़ाई की, जब हम बोलते हैं टू वन जा टू, तो फिर क्या ही पुराने ज़माने में जब उसे हिंदी में बोला जाता था तो कैसे बोला जाता था। उस पर भी एक गीत बनी, और वो गीत जो बना वो आज आप भी सुनने वाले हैं। आइए सुनते हैं।
1: रॉक रॉक रॉक बेबी रॉक।

तो आपने देखा ना, सुना ना कि कैसे कैसे गीत और अलग अलग तरीके के गीत, हर तरीके के गीत गोल्डन एरा के गीत कहलाते हैं। सुनहरे गीत, खूबसूरत गीत, गीतों में सादगी और प्यार मोहब्बत, सब कुछ गीतों में नज़र आ जाता है। अगर हम बात करें कि उस ज़माने में जितने भी सिंगर थे वो सब अपनी गायकी के मशहूर और माहिर, शायद ही कोई ऐसा सिंगर होगा जो अपनी आवाज़ से लोगों के दिल को ना जीता हो। जी हाँ, उस वक्त के किसी सिंगर ने, किसी गायक ने एक गीत भी अगर गा लिया हो वो भी हिट रहा था। अब अगर बात करें कि सारे हिट गायक में से कई गायक ऐसे हैं जो आगे चलकर काफ़ी समय तक, यानी कि उस जनरेशन से लेकर आगे जनरेशन तक को अपने गीतों से लुभाया, उनमें से एक नाम महेंद्र कपूर है। उनका ये गीत बहुत ही फेमस, आइए सुनते हैं।

0: क्यों खूबसूरत था ना ये गीत। वही तो कहते हैं ना कि गोल्डन एरा की बात हो रही है, सुनहरे गीत की बात हो रही है, और अब इसका आखिरी पड़ाव भी आ गया। आखिरी गीत आपके नाम, मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अरे तूने जो इधर देखा, हाय मैंने भी उधर देखा। तूने जो इधर देखा, मैंने भी उधर देखा। काहे को जल है।

0: हर शोला सा चमक गया, थोड़ा मैं बहक गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है।

श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी के माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। एनआईए ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक सक्षम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. A 3-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with the leading global CEOs in New Delhi yesterday. Mr. Modi stressed the need for close cooperation between the government and industry to strengthen India's semiconductor sector. He also called for greater industry participation in skill development, innovation, artificial intelligence, and quantum computing. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organisation from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from today on the occasion of Vishwakarma Jayanti.

0: अनिल इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गए, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।

वो देखो, सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघल कर नदी का रूप धारण करती है। फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: सुनिए, आज हमारी जीत का दिन है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास, और हमारे साथ वो सितारे।
1: लेकिन तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालना चाहते हो? क्यों?
0: क्योंकि मैं तुमसे प्यार

rhythm! Can you feel it? Then let's go for it.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज़ 24x7। 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमार वेल और सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है।

0: उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
1: स्वच्छ

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता लेने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। कोयला मंत्रालय आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां दौर आयोजित करेगा। 16वें दौर में पूरी तरह और आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खंडों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि कोयला खदानों की नीलामी का यह ढांचा उदार शर्तों के साथ संचालित होता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा में देश सेवा के मंत्र और आज भी जारी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate SEMICON India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with the leading global CEOs in New Delhi yesterday. Mr. Modi stressed the need for close cooperation between the government and industry to strengthen India's semiconductor sector. He also called for greater industry participation in skill development, innovation, artificial intelligence and quantum computing. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund Organisation from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from today on the occasion of Vishwakarma Jayanti. BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. Briefing media in Kolkata ahead of the launch, senior BJP leader and Defence Minister Rajnath Singh praised Prime Minister Modi as a true leader, one who gives priority to the welfare of citizens.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए आपको लेकर चलते हैं गजलों की खूबसूरत दुनिया में।

जनाब अब्दुल हमीद अदन साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें अदन साहब ने रंग, खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताजा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले कतार से

एक ऐसा नाम जिसमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी, इंतज़ार भी है, मुलाकात की खुशी भी। दोस्तों, गज़ल महज चंद अशआर का सिलसिला नहीं, बल्कि दिल की उन खामोश बातों की आवाज़ है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं, कुछ इस तरह। भूपेंद्र सिंह जी की आवाज़ में।

गजल एक ऐसा नाम जिसमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी, इंतज़ार भी है, मुलाकात की खुशी भी। और दोस्तों, कभी किसी की याद बनकर गजल दिल में उतरती है तो कभी किसी की अधूरी मोहब्बत का अफसाना बन जाती है। कभी इसमें ज़िंदगी की हकीकत मिलती है तो कभी ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया। गजल की खूबसूरती यही है कि हर शख्स उसे अपने अंदाज में महसूस करता है। एक ही शेर किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है तो किसी दूसरे के लिए जुदाई की कहानी। मिताली जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

दोस्तों, गज़लों की दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अल्फाज कम होते हैं मगर एहसास बहुत गहरे। कभी दो मिसरे पूरी कहानी कह जाते हैं और कभी एक शेर दिल में ऐसा उतरता है कि देर तक उसकी गूंज रहती है। शायद इसीलिए गज़ल सुनना सिर्फ संगीत सुनना नहीं, बल्कि अपने ही दिल से एक खामोश मुलाकात करना है। और रात का ये वक्त तो अपने से मुलाकात करने का इससे बेहतर जरिया और कोई हो ही नहीं सकता।

कुछ गज़लें हमें किसी ख़ास शख्स की याद दिलाती हैं, कुछ किसी पुराने शहर की, किसी गुज़रे हुए मौसम की, और कुछ बस यूं ही दिल को छू जाती हैं। गज़ल की खूबसूरती यही है कि उसका रिश्ता सिर्फ आवाज़ और धुन से नहीं, हमारी अपनी यादों से भी होता है। तो आइए एक और गज़ल के साथ अपनी यादों की किताब का पन्ना पलटते हैं। रात के 3:45 हो चुके हैं।

होती। कभी एक छोटा सा शेर ही दिल की पूरी कैफियत कह देता है, और जब वही अल्फाज किसी खूबसूरत आवाज़ में ढल जाए तो गज़ल बन जाती है। ऐसी ही गज़ल अब आपकी खिदमत में, शायद उसके अल्फाज में आपको अपना कोई एहसास भी मिल जाए।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना, जिसमें हम सुनेंगे डिवोशनल म्यूजिक, जिसमें IKI येसुदास जी, देवी जी और कोरस है, और साथ ही दीपाली भल्ला जी।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: और आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम कर्नाटक संगीत पर आधारित नाद ब्रह्म। हमारे कलाकार हैं चंद्रशेखर जी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

TRM 810 किलोहर्ट्ज पर आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 44 सेकेंड्स हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और आइए अब हम आपको हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद 5 बजे समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज हम जानेंगे तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 पर कार्यक्रम स्वर रंजनी आप सुनेंगे, और जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग नाथ भैरव आप सुन सकते हैं डॉक्टर गरुण मिश्रा की आवाज़ में। 6 बजे समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में। 6:10 का समय रहेगा कार्यक्रम वंदना का। फिर 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आज का विषय है योग और आधुनिक जीवन। 6:45 पर रामचरितमानस में आप सुन सकते हैं अयोध्या कांड का भाग 51। 6:55 का समय रहेगा संस्कृत समाचार का। फिर 7 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी और फिर अंग्रेज़ी में समाचार। 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम संगीतिका का, जिसमें आज आप सुन सकेंगे भजन सुश्री समृद्धि मल्होत्रा जी की आवाज़ में। 7:30 का समय रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात में हिंदी समाचार। फिर 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़, जिसमें अंग्रेज़ी में समाचार सुने जा सकते हैं। 8:30 का समय है उर्दू समाचारों का। फिर 8:45

मिनट का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। 9:15 पर कार्यक्रम उद्योग पत्रिका में आप सुन सकते हैं डॉक्टर हमेंद्र डांगी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाणिज्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर से कमल किशोर जी की बातचीत, जिसमें आज का विषय है प्रबंधन अध्ययन वाणिज्य और व्यवसाय, शिक्षा से रोजगार के नए अवसर। इसके बाद सुबह 9:30 का समय रहेगा पंजाबी कार्यक्रम का। नाम है मिट्टी दी महक।

0: और उसके बाद भी कार्यक्रमों का सिलसिला इंद्रप्रस्थ चैनल पर यूं ही चलता रहेगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीना सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मरगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मंदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदल

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं, ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए और दोनों हाथों से पकड़ लें।

अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें, अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।